ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक पहुंचे अपने का रेनबो साथी सुवी ऑन द शो मो देसा फ्रेंड्स आमर शास्त्र कहे संग नो वरुणः एहर अर्थ हेउछि जणर देवता वरुण आम पई शुभंकर होवंतु किंतु ई समुद्र हेउछि शत्रु मानंक पई ज्वलंत निया सबबेले ई समुद्र पथ दे अनुप्रवेश करबा पई से माने प्रस्तुत हे रहथांते सीमारे जेमती हिमालय अटल हुई ठिया हुई छी ठीक सेमिति समुद्र रे आमर विशाल काय युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भले विमानवाही जहाज पहरा देउछंती कहार साहस छि जे से आम जल सीमा को अतिक्रम करी भारत भूमि को छुइबो बंधु आजिर आधुनिक युगरे समुद्र रे जिए शक्तिशाली से सारा विश्व रे भी शक्तिशाली

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक प्रसारित होउछि 102.4 मेगाहर्ज छुगी आज बुधवार 1948 शताब्द वैशाख 16 दिन इंग्राजी मे 6 तारीख 2026 मसीहा। श्रोताबंधु स्टूडियो घंटे समय वर्तमान सकाल 5:58:40 आमर अगणित श्रोताबंधु मानंकु शुभ सकाळर शुभेच्छा एवं अभिवादन जणाई आरंभ करुछु आज दिनर प्रथम अधिवेशन।

0: ସାଥୀ ସତ୍ୟ ସାଇବାବା କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସଂସ୍କୃତରେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ।
1: ସାଥ ମେ ସର ଫିରୋଜି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रूपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज

0: अनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली।

0: देशस्य राष्ट्रपतिना टोलैम इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु अपि च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विस्तृतं चर्चां करिष्यतः। वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य त्रिदिवसीया यात्रायां ह्यः नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। तेन सह वियतनाम सर्वकारस्य अनेकेषां मन्त्रिणां वरिष्ठाधिकारिणां च उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलम् अस्ति। सहैव एकं प्रबलं वाणिज्य प्रतिनिधिमण्डलमपि समूहेन सह अस्ति। अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचनानन्तरं राष्ट्रपत्युः टोलैम वर्यस्य भारतस्य एषा प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। भारतस्य कर्पास क्षेत्रस्य बाधायाः निवारणाय, विकासे न्यूनतायाः समाधानाय, गुणवत्तायाः चिन्तायै च केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन कर्पास उत्पादकता अभियान कपास कान्ति इत्यस्य कृते 600,000,000 रूप्यकाणि स्वीकृतानि। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इदम् अभियानं सर्वकारस्य फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन इति 5F विषयैः सह संरेखितमस्ति। कर्पासस्य उत्पादकतां वर्धयितुं च केन्द्रितमस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन आपत्कालीन ऋण रेखा प्रत्याभूति योजना 0.5 अनुमोदिता। योजनायाः अन्तर्गतं MSME इत्येतेषां कृते 100% ऋण प्रत्याभूतिः प्रदीयते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारत सेमीकण्डक्टर मिशन इत्यस्यान्तर्गतम् इतोपि 2 सेमीकण्डक्टर परियोजने अनुमोदिते।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो एलईडी प्रदर्शन सौविध्यम् अन्तर्भवति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20/26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोऽपि स्वीकृतः। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 59/56 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदात् स्वत्याग पत्र प्रदानाय निराकृतवती। तस्याः अनुसारं मतानि बलात् लुण्ठितानि, मतदान प्रक्रियायां च कपटम् अभवत्। पश्चिमबंगस्य निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इत्यस्याः व्याख्यायाः प्रतिक्रियारूपेण भाजपेति दलेन उक्तं यत् भारतं लोकतन्त्रमस्ति तथा च सर्वदा तस्य सम्मानं करणीयम्। श्री संबित पात्रा अवदत् यत् एतत् भाजपेति दलस्य उपरि आक्रमणं नास्ति, अपितु लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च उपरि आक्रमणमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् 8 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये हैदराबादे स्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।

सदी वर्तमान समय 7:05 हाँपी जाऊँगी। वर्तमान आसतु शुणा आंचलिक संवाद।

हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल स्टूडियो घंटे रही जाई छी वर्तमान 7:26 रेडियो से पखरा आपन माने समस्त रेडियो पखरा ऐसे की पहुंच जाई छी आपन मानकर म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत कहिबे पई आपन मान को समस्त को गुड मॉर्निंग सदी आम समस्त हूचे जने जने सामाजिक प्राणी समस्ते कहूना छोट बेलू जानी भी जे मनीष हूँ गोटे सामाजिक प्राणी बयस बढ़िया सहित कर्म क्षेत्र में आम तत्परता दैनंदिन जीवन सब दायित्व व्यस्तता ए सब धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली हठात आज सका शुभ सका स्टार्ट करू करू मु एक कहीं कह कारण आज मुझे टॉपिक विषय जो कथा गुड़ी आपण मान कह कथा टिके टिके या सहित रिलेटेड केमिति रिलेटेड जी जो सब कर्म क्षेत्र में तत्परता बढ़ुची दायित्व बढ़ुची व्यस्तता बढ़ुची ए सब कथा भितर संपर्क गुड़िकर परिचालन भितर समय परिचालन भितर उणा अधिक एपट सेपट मध्य केमी आम हो जो गुड़ा काम क्राम काम को प्रभावित करुची केतेबेले केमती आमे जेतेबेले देई पारुने कहा को समय अनेक समय रे संपर्क भी या भीतर प्रभावित हो जाउची ई सब भीतर गोटे बहुत बढ़िया जिनस अछि गोटे बहुत बढ़िया की अछि गोटे केमती गोटिया शक्ति अछि जहाँ के आम भीतर अछि किंतु आम को बास ताकु टिके से सोई रही टे जाग्रत करिवार कथा जिते चिंता को फूर्किना उड़े पारे सहज सरल करमर अभ्यास को आसतु आज शुभ सका तारि विषय कथा सी कौन सी हूँ एकाग्रतार शक्ति एकाग्रता कंसंट्रेशन एकाग्रता मनीष को कष्ट कष्ट कार्य को सहजरे परिचालित करने गोटे शक्ति दिए एकाग्रता सबुठारु प्रथम काम तार एकाग्रतार कौन ये स्थिर एवं स्थित प्रज्ञ कर माने आपण जे कुणसी कथा को करिबा पई चिंता करिवे अनेक समय रे अनेक समस्यार समाधान को आपण कन्फ्यूजन रे पड़िकी समाधान करि परंतिनी एई जो एकाग्रता खूब शीघ्र समाधान बाट को फिटेई दिए स्थिर चित्त रे मन दे जेतेबेले आपण काम करिवे अनेक समस्यार समाधान रो उपाय आपणकर मन को शीघ्र पळि आसिबो मुंड को जल्दी पळि आसिबो एई स्थिर चित्तरे मन देके काम कले आपण जेकोणसी काम को सठिक भावरे एवं निर्भूल भावरे करिवार संभावना मध्ये बहुत अधिक सेथिपाई मध्ये लोडा एकाग्रतार शक्ति कामटी केते शीघ्र भावरे संगठित हो परिबो आपण देखंतु आपण गोटे काम को करिवे एवं जदि आपणकर माइंड के डिस्ट्रैक्ट थिबा आपण के अन्यमनस्क थिबे सेई काम को आपण जेतेबेले स्थिर चित्तरे करथिबे शीघ्र शीघ्र कर दउथिबे किंतु जेतेबेले के अन्यमनस्क होइ जिवे सेई काम को करिवा पई के अधिक समय लागि जाय तेनु सब क्षेत्र रे ए कामटी ए कथाटी लागू हे तेनु काम को शीघ्र संपादित करिवा पई बा तार एग्जीक्यूशन पई मध्ये एकाग्रतार शक्ति बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे एवं ये गोटे माध्यम जेकोणसी कामर निरंतरता बा कंटिन्यूस को छोट छोट भाग रे विभक्त करिबा माने लक्ष्य स्थिर करिबा एवं समय रे कामटी को शेष करिबा छोट छोट भाग रे से कामटी को जेतेबेले आपण डिवाइड कर देबे गोटे पर्याय क्रम रे गोटे काम को आपण करिबे देखिबे से काम आउरी सुंदर भाव रे संपादित हे परिबो ए सब काम किए करिबो ए सब कथा करिबो आपणकर मन स्थिर हेले आपणकर छोट लक्ष्य टिके आपण हासिल करले पुनी बड लक्ष्य को आगुन को जिबे ए सब जिनस पई ए सब जिनस रे उपाय दबा पई आपणकु एकाग्रता गोटे बहुत सुंदर रोल प्ले करे तबे चलंतु वर्तमान आपणमन को गामी गोटे सुंदर गीत।

0: वेलकम बैक अगेन, ट्यून कर चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंदी दिल से दिल तक समय साथी सॉरी सॉरी आसिलानी एवं इशारा देखी कहलानी वाइंड अप करिवो को पड़िवो आज रो शुभ सकाळ को किंतु जाउ जो आपन मान को कहि देउची माने वाइंड अप करू करू ए शो को कहि देउची जे आज मध्य इंटरनेशनल वर्ल्ड डाइट नो डाइट डे नो डाइट डे रो अर्थ कोन आमे मन त समस्त सुनिचे जे डाइट टिके करिवा दरकार हेल्थ कॉन्शियस हो जाय छे आमे मन समस्त आमे टिके केते बेले हल्का मोटा पतला डाइट रो प्लान चेंज करने पड़ी खास कर मोटापार ये अधिक डाइट से कन्सियस समस्ते तेणु ये जो नो डाइट डे ये कौन कहूँ ये सेलिब्रेट करोसी बॉडी शेप रही था आप जहाँ भी जमती देखा जाऊ खाइले देह लग जाऊ झड़ जाऊसी कम्प्लेन करवा उचित नुहे ता सहित आउ गोटे सुंदर बार्ता दौर कौन ना जदि आमर केत इच्छा होची कौन गोटे भल जिन खाइबा विच इज हेल्थी टू आवर जोटा कि आम देह भल हेल्दी बट आम से बॉडी कॉन्शियस देह लगे किए हेल्दी कि सब जिन भाविक जो आम दूरे दौचे तारी विषय से आमको कहे ना ना ना ना आज नो डाएट डे आपको सेलिब्रेट करूँ आप जहाँ इच्छा हो खातु एवं एक ही तो जिंदगी है खाना थोड़ा पड़ेगा खा के थोड़ा एस करना पड़ेगा यही जिनस को आज नो डाएट डे कहूँ सेलिब्रेट वर्ल्ड एक कथा को नहीं से आपन जदि इच्छा अच्छे आज टे कौन खाई दिंतु जमा टेंशन नि डाइट फाइट कथा आज टिके भूली जातु आज चीट दे कर दिंतु वर्तमान साथी समय सरी जाइए चलतु वर्तमान आम नेक्स्ट प्रोग्राम रिले कर प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आउ कि क्षण भितर स्टे ट्यून्ड
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल असम केरलम तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए।

0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यू

0: डीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति

0: अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry following completion of electoral process. NIA chart sheets doctor two other

अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा।

0: वेलकम बैक टू इनकर्शन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कोचंदी दिल से दिल तक समय वर्तमान स्टूडियो घंटा रे 8:32 आसंतु साथी वर्तमान आपन मान का मन पसंद रे कार्यक्रम मो पसंद
1: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु आपनकर साथी जैस्मिन स्वागत करूची आपनकर आमर आम समस्तंकर प्रिय प्रोग्राम कु जानो ना हला मो पसंद ओनली ऑन एआईआर एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे
2: शुभ सकाळर शुभेच्छा शुभकामना आउ नमस्कार सहित मु नमिता आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे से मु प्रिय उपन्यास बहिटी परि सरल शब्दर समाहारे गुंथा कल्पनार दस्तावेज खंडे मु तांको अबाध्य व्याकरण बहिर अबोध अक्षर

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: सुंदर गीतर आरंभ कले।
1: धन्यवाद विश्वजीत भाई। मु शारदा चरण दास झंकड़ मा शारदा को पाखरु कंटापड़ारु कहूँ लगी
0: भाई कौन कह टॉपिक विषय
1: आज्ञा देख तो छुआ बेल स्मृति तो बहुत आज्ञा अच्छी मामू घर बुलिया मौसी घर बुलिया ये सब बहुत स्मृति अच्छी भितर आंब पणुस चोरी
0: करिया
1: पोखरिया जा बुड़िया
0: बुड़ा
1: आम सब विभिन्न प्रकार स्मृति अच्छी
0: खरा छुट्टी
1: आजिकल तो हेई पारे ना से जो भाई से जो जेनेशन टा थे से फेर ना के
0: निश्चित
1: फेर
0: समय सहित बहुत किछि परिवर्तन हो गेलानी मु कहली हाँ समय सहित एते परिवर्तन हो गेलानी वर्तमान जे वर्तमान आमुक भारी कष्ट हो जाउछि पिला मानक पखरु फोन टिके दूरे कि तांको ए सब नेचुरल खेल
1: आमे सब समय ते सब दिन जानुछे ए दिनटा खाइले भलो नुओ से दिनटा कले भलो नुओ किंतु से दिनटा बड माने करूछन्ति छुआ माने भी मैट्रिक पास करिकरी से दिनटा करूछन्ति
0: आज्ञा निश्चय भाई मु गोटे कथा पचारिबी आपनकु जे सब जो जो कथा कहले पोखरी कथा खेल कथा चोरी कथा आंब कथा सबुठ अधिक आपन को जिनसडा को मिस करचुंदि से समय रे
1: सेटा होची ए जो आपन कहली फल
0: आज्ञा
1: आपनकर पिजुली हो जामकली हो
0: हां
1: हां पणस हो सपुरी हो से सब सपुरी गछ बहुत थला एबे त प्राय सपुरी गछ त प्राय निए
0: चोरी फोरी करी खाती ना मैंने तोली की पूरा परमिशन नहीं के आनंदी से तोले
1: नहीं से तोल तो प्रत्येक बारे रे होतला ये बताओ ना ही के करू ना बारी पड़ी किंतु के करू ना एमदे बहुत थर एमदे पणस कुटे का मारिया पाथिला पणस कुटे का मारी फटे दबू तापर एमदे बापा आसी से जो लोक परतेले आम घरे मु जाएंगे जन घर गोटे कहू स्टोरी घर जाकि बापा घर छुटेली बापा जाए पहुंची गले बापा सांग सी कहले कह पु अमुक लोकर गोटे ये कर पचर मुझे गला आज बाडेबी मुझे घरे थाए आज्ञा से माउस कह तु रही जा बापा आउ
0: माने बापा खोजी खोजी जाई जो आपन लुची चंदी भी सेठी
1: बापा घर लुची माउस कहले कौन करी मौसी मत लगानी ये कौन करी से मैं से लाट्रीन बाथरूम नहीं मौसी कहले गोटे कथ कर मुझे गोटे छोटिया छेड़ी अच्छी दांडे आणिक आसबू तो बापार समीर कथबार्ता हूँ तु गोटे कथ कर लगे मुझे ना मौसी छेड़ी लगे रही तुम गोटे कथ कर सी मौस कौन कहले गोटे लुगा मत बुड़े दे आज्ञा दि जन गपुचन दांड पिंडा माटी पिंडा मत गोटे लुगा मौसी पिंधे देले पूरा स्त्री लोक भाया से घर बाहरी आईले ओढ़ा देकर
0: जाओ गोटे सुंदर स्मृति आपण मन पकेले भाई कथा हवा को बहुत कथा है किंतु समय भाई ऑलरेडी सरी गलानी तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपण कॉल करले आपण सहित कथा है कि बहुत भल लागिला रहिलु भाई नमस्कार तबे साथी ये थिला आपण मानक सहित आमर सुंदर आलाप आउ खरा छुट्टी रे सब स्मृति अनुभूति कथा मन पकेइ देले साथी वर्तमान समय सारा देखि कहिलानी वाइंड अप करबा को पड़िबो एठी डायल इन लाइफ चिटचैट को एवं से स्मृति अनुभूति सब आपण मान छाती भितर एमती चकमक करके रही था खरा छुट्टी को आपण मिस करुछन्ति निश्चय किंतु से समय को हृदय भितर केबे भी दूरे देबेनी निश्चय निज पाखरे साहित्य रखिबे एवं एही सुंदर गीत सहित आमे वर्तमान पहुंची जाइछे आसिकी रेनबो एसएमएस कार्यक्रम रे गीत परे परे आपण माने जल्दी जल्दी आमको एसएमएस करंतु व्हाट्सएप रे मेसेज करंतु आपण को मनपसंद गीत सुनिबा पई।

वेलकम अगेन स्टार्ट करछन ट्यून करछन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो स्टार्ट हि सरीची रेनबो एसएमएस रे प्रोग्राम आपन मानको कहितली जे हमर नंबर होची 0949596321 आपन जदि हमके एसएमएस करबा पई चाहुचन जे करबा पई चाहुचन व्हाट्सएप तबे नंबर होची 8895254200 एसएमएस करबा पई हेले फोन रे एसएमएस बॉक्स कुजिबे टाइप करबे एफएमआरसी

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपके साथ एक बार फिर से आपकी दोस्त बबीता त्रिपाठी, ओनली ऑन आकाशवाणी, रेडियो दिल से दिल तक। और अब जो समय हो चुका है वो हो चुका है आपके बॉलीवुड या एकदम हो जाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकदम बॉलीवुड की जो भी ताजा ताजा गर्मा गर्म खबर होंगी वो परोसी जाएंगी और आपके लिए एक सवाल भी होगा जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। कैसे बताऊंगी कैसे, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, अभी गाने की शुरुआत तो कर लेने दीजिए। बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, बोले दो बीटी विद बीटी, एंजॉय।

तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें तो होंगी, साथ में आपके लिए बॉलीवुड सरताज बनने का मौका भी होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इन्हीं बातों में छुपा होगा जवाब। अगर सवाल 11:30 बजे आएगा तो उससे पहले जवाब आ चुका होगा, और अगर आपने ध्यान से सुना तो जवाब तो आपको पता ही होगा। बस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको आंसर दे देना है और बिन जाना है बॉलीवुड सरताज, मतलब तुक्के वाली बात होगी और लक वाली बात होगी। अगर आपका कॉल आया तो समझ लीजिए बॉलीवुड सरताज आप ही है और आपसे हमारी बात होगी, हमें बात करने का आपसे मौका मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपकी आवाज आकाशवाणी रेनबो के सभी श्रोता सुन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुना है, क्योंकि बॉलीवुड की जो भी खबरें दूंगी उन्हीं में से एक सवाल छुपा होगा जो आपसे पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे।

तो मैं क्या कह रही थी ना कि बॉलीवुड में ना बहुत कुछ खास हो रहा होता है, बहुत कुछ जबरदस्त हो रहा होता है और आपको पहले से भनक लग जाती है. और ये कमाल है बॉलीवुड ट्रेल्स का, क्योंकि आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स रेगुलरली और फिलहाल तो आप सुन रहे हैं बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी चल रहा है. तो

ऐसे में बॉलीवुड की एक रोमांचक खबर आप तक पहुंच जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आलिया भट्ट तुम्बाड 2 में, यस, हॉरर वर्ल्ड में कदम रखने वाली हैं आलिया भट्ट। ऐसी खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ तुम्बाड की इस सफल फ्रेंचाइजी से हाल ही में आलिया भट्ट का नाम जुड़ गया है और उन्होंने तो इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और अब मैंने आपको चोरी से ये बात बता भी दी है। तो भाई अब हॉरर फिल्म में आलिया भट्ट क्या कमाल करेंगी ये तो आने वाली वाला समय बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा उनका रोल इस फिल्म में नहीं है, लेकिन जो भी है जबरदस्त है और इतना जबरदस्त है कि तुम्बाड 3 में भी उनका नाम आगे आएगा। मतलब ये कि शुरुआत यहां से होगी और तुम्बाड 3 तक जाएगी और जाने कहां कहां तक जाएगी, मतलब बात तो निकल पड़ी है, दूर तक जाएगी।

का और साई का लेते हुए डोरियां छट दी है किसने, वाराणसी की टीम ने। एसएस राजा मौली के निर्देशन में मूवी आ रही है वाराणसी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार कहें तो बड़ी बात नहीं होगी, वो है महेश बाबू। वैसे बात तो बड़ी ही है क्योंकि महेश बाबू साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनके अपोजिट प्रियंका चोपड़ा और साथ में एसएस राजा मौली का निर्देशन, फिल्म तो बड़ी होगी, नाम बता रही है वाराणसी। तो ऐसे में इस फिल्म का इंतजार भी बनता है, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि ये मूवी जल्दी से बनकर तैयार हो, लेकिन कैसे बनेगी, पानी की दिक्कत, पानी की किल्लत कैसे हो सकती है भाई, इतनी बड़ी फिल्म में पानी की दिक्कतें कैसे हो सकती हैं, ये हो गई है भाई। जब बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, बड़े बड़े शहरों में होती हैं, तो छोटी छोटी बातें होती रहती है और ऐसा ही कुछ हुआ है इस फिल्म के साथ, तभी तो इसकी शूटिंग रोक दी गई है फिलहाल। पता है क्यों? क्योंकि इस फिल्म के अनुसार एक अंडर वाटर शूट किया जाना था, जिसके लिए 150 पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। हैदराबाद में इसकी शूटिंग थी और अंडर वाटर सीक्वेंस शूट करना था, लेकिन 150 पानी के टैंकरों की मांग कोई छोटी बात है? अधिकारियों ने कहा, भैया पहले शहर को पानी सप्लाई मिलेगी, उसके बाद देखा जाएगा। और ऐसे में जो फिल्म की शूटिंग है वो रोकनी पड़ी, क्योंकि फिलहाल तो पानी उपलब्ध नहीं हो पाया और शूट की जरूरत ऐसी ही थी। देखा जाएगा आगे क्या होता है, इसका क्या सलूशन निकलता है, जब आएगी अपडेट तब हम बता देंगे। फिलहाल तो जब एंट्री मार रही हैं बॉलीवुड में काफी लंबे टाइम बाद प्रियंका चोपड़ा, तो हम ये गाना बजाकर उनका स्वागत करते हैं और घंटी भी बजाते हैं।

एक और एंट्री अगर हो जाए ना तो दिल की घंटियां ऐसे ही बजने वाली है, टंग टंग टंग। किसकी बात कर रही हूँ? फिल्म जो आने वाली है सलमान खान की, उसकी बात कर रही हूँ, जिसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है उसकी बात कर रही हूँ, और जिसके लिए एक हीरोइन से बातचीत शुरू हो चुकी है उसकी बात कर रही हूँ। एक मूवी जो आने वाली है और सुपर हीरो पर बेस्ड है, उसमें सलमान खान को लिया जा चुका है पुष्पा 2 के मेकर्स द्वारा। ये बात तो हम सबको पता हो चुकी है, जिसने जिसने भी बॉलीवुड ट्रेल्स ध्यान से सुना है और ध्यान से सुनते हैं उनको पता होगा, लेकिन उसमें हीरोइन कौन होगी ये अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन अब कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं जो मैं हवा में उड़ा रही हूं ताकि आप तक पहुंच जाए कि अब इस फिल्म में किससे बात चल रही है। आखिर राज एंड डीके की सुपरहिट जोड़ी ने जो सलमान खान के साथ फिल्म बनाने का निर्णय लिया है, उसमें हीरोइन कौन होगी उसकी चर्चा गर्म है, और अगर वो हीरोइन तय हो गई तो उनके साथ ये सलमान खान के साथ उनकी पांचवीं मूवी होगी। पांचवीं कौन सी पहले हो चुकी है? बजरंगी भाईजान, क्योंकि मैं और मिसेस खन्ना और बॉडीगार्ड समझ तो गई होंगे, बात कर रही हूँ करीना कपूर की। यस, करीना कपूर अगली उनकी सुपर हीरोइक जो मूवी आ रही है उसमें हो सकती है सलमान खान के ऑपोजिट, ऐसी चर्चा गरम है। और एक और मूवी जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है सलमान खान के साथ, और ये साउथ का नाम है बड़ा, जिसके निर्देशन में ये मूवी बनेगी और सलमान खान ने उसके लिए हाँ कर दी है, निर्देशक वामशी पेडिपल्ली, जिनके साथ अनटाइटल्ड इस फिल्म का ऐलान हुआ। इसके निर्माता दिल राजू हैं, लेकिन फिल्म में कौन विलेन होगा इसकी भी तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी, और अब दो नाम सामने आ रहे हैं तो मुझे लगा कि आपको एक साथ लगे हाथ बता ही देती हूं कि ये दो बड़े नाम कौन कौन से हैं। धुरंधर के कौन? धुरंधर के आप सबको पता है, एक बड़ा नाम आया था धुरंधर में, और विलन के नाम पर जब आया था अक्षय खन्ना का नाम, और हमने सपने उनको देखा इस रोल में, तो भाई मान गए कि हीरो को हीरो बनाने वाला अगर कोई है तो अक्षय खन्ना। और इस मूवी में, मतलब ज्यादातर मूवीज में विलन जो होता है जितना स्ट्रांग होगा ना हीरो उतना ही स्ट्रांग बन पाएगा। और दूसरा नाम अभिनेता फहाद का है, जो कि साउथ सिनेमा के काफी पॉपुलर अभिनेता है फहाद फाजिल, और ये दोनों नाम सामने आए हैं। अब इनमें से फाइनल किसका होगा आएगा तब आपको बता दूंगी, फिलहाल मैं आपको गाना सुनाऊंगी और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ। फिलहाल किसी दबंग हीरो नहीं, विलेन की तलाश जैसे ही पूरी होती है आपको बताया जाएगा गाना दबंग का बनता है।

वो घड़ी आई गई है जब आपसे सवाल पूछ लिया जाए ताकि जवाब देकर आप बॉलीवुड सितारा बन जाएं। वैसे मोहम्मद इम्तियाज, ऐसी भी बात नहीं है, मैं वो सवाल नहीं पूछ रही हूँ जिसका जवाब ऑलरेडी आप दे चुके हैं। कौन सा सवाल पूछ रही हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। बीटी विद बीटी चल रहा है भाई, बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ, पता है ना।

0: जाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाए। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और

0: परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: तो आप सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि सवाल का टाइम हो गया है और आप सब इंतजार भी कर रहे हैं। जवाब अब्दुल राशिद ने भी कुछ दिया है लेकिन क्या करें, सवाल वो है ही नहीं जो आप जिसका जवाब दे चुके हैं आप। तो चलिए सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। वैसे राशिद थोड़ा बहुत पहुंच चुके हैं लेकिन हम आपको बताते हैं कि सवाल वो नहीं जो आप दे रहे हैं जवाब। वाराणसी फिल्म की बात की राइट, लेकिन इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट कौन है लीड एक्टर, इसकी भी बात की थी अगर आपको पता हो तो। बस पता है तो जवाब यही है और आपको जवाब देना है व्हाट्सएप मैसेज करके। सबसे पहले लिखना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आपको बताना है कि वाराणसी जो अपकमिंग फिल्म है उसमें प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट कौन है, साउथ का एक्टर जो बहुत फेमस है, वो लीड एक्टर है इस फिल्म में, उसका नाम लिखना है। बस भेज देना है 9868107070 पर 9868107070।

वैसे भूत बंगला को लेकर छाए हुए हैं अक्षय कुमार, लेकिन आने वाली फिल्म के अपडेट भी वो दिए जा रहे हैं। अब फिल्म भी तो कुछ ऐसी है जिसकी चर्चा बनती है। अक्षय कुमार हो, साथ में उनके अनीस बज्मी का निर्देशन हो और फिल्म की बात हो, तो कैसे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विद्या बालन भी उनके साथ हैं और इतने बड़े बड़े नाम एक साथ जब जुड़ते हैं तो फिल्म का इंतजार बनता है। अक्षय कुमार की केरल वाली जो शूटिंग है, शूटिंग का शेड्यूल है वो पूरा हो गया और इसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो अब आगे क्या होगा, जब खबर आएगी आप तक पहुंच जाएगी। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ फिलहाल। और हाँ, सवाल अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो रिपीट कर दूंगी थोड़ी देर बाद। आपको जवाब देना है ताकि बॉलीवुड सरताज बन जाए, हमसे बात करने का मौका मिले और हमें भी आपसे।

देखिए कहीं भी आप घर बनाइए और दिलाइए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि वो घर हॉन्टेड तो नहीं है। ऐसा ही कुछ होता है फिल्म हॉन्टेड 3D में। टीजर रिलीज कर दिया गया और डर देखने के बाद ही लग रहा है तो आगे क्या होगा। वैसे डेट तो काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं कि रिलीज का पता चले, लेकिन अब टलते टलते 12 जून हो गई है, मतलब जल्दी हो गई है। और बहुत पहले से ये टीजर ट्रेलर या फिर रिलीज डेट पर चर्चाएं गर्म थी, लेकिन अब फाइनली हॉन्टेड 3D का टीजर रिलीज हो गया है और अब डेट भी पता चल गई है कि ये रिलीज होगी 12 जून को। 12 जून को वैसे किसी खास का बर्थडे है, अगर आप गेस कर सकते हैं तो गेस करते रहिए, बहुत टाइम है। और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। आपको बता दूं हॉन्टेड 3D के टीजर की, तो इसमें क्या दिखाते हैं कि एक कार में सुनसान सड़क पर मिमोज चक्रवर्ती को गाड़ी में बैठे दिखाया जाता है और ये सफर एक महल पर जाकर रुकता है। महल में पहुंचते ही कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद चेतना पांडे की एंट्री होती है और टीजर के जो रहस्य हैं उससे पर्दा नहीं उठाया गया है। अब उठा दिया गया पर्दा तो क्या आप पूरी मूवी देखकर जाएंगे, तो टीजर क्यों कहलाएगा भाई। तो मूवी के लिए 12 जून का इंतजार, सुनते रहिए बीटी विद बीटी। वैसे सवाल मैंने क्या पूछा था, दोहरा दूं क्या, चलिए दोहरा देती हूँ। वाराणसी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट कौन है लीड एक्टर, ये है आज का सवाल, जिसका जवाब आप देंगे तो बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, नहीं भी बने तो नाम तो शामिल जरूर होगा। 9868107070 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, और आप सबके लिए जो सवाल है वो भी दोहराया जा चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे ये होने वाला है कि आपके लिए जो आपके जो नाम है वो

मैं लेने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। लेकिन जो ब्रेक है ना, वो कह रहा है कि आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। मैं बिल्कुल परेशान होने के मूड में नहीं हूँ। एकदम वो जो भी मुझे प्ले करना है वो रुक गया था, लेकिन मैंने उसको समझाया बुझाया और अब मनाया है। तो चलिए देखते हैं कुछ कहता है ये।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: और आकाशवाणी पर चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी। और आपको बता दूं, दादी की शादी की स्क्रीनिंग हो गई। दादी की शादी फिल्म का नाम है और इसमें है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, उनकी मम्मी, यस, नीतू कपूर की ये मूवी है, एक तरह से कह सकते हैं वही दादी बनी है। दादी की शादी 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन उसकी स्क्रीनिंग स्पेशली रखी गई थी और उसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे तमाम सितारे हुए, उनकी बेटी भी इस फिल्म में है और वो भी मौजूद रही, साथ में रेखा भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद रही, बड़े बड़े नाम रहे। और अब ये मूवी 8 मई को रिलीज होगी सिनेमा घरों पर, तो आप इसको देख सकते हैं। और रही बात आप सबके नामों की, जो मैं लेना चाहूंगी, लेकिन सोच रही हूं कि इस गाने के बाद इस आप सबके नाम लिए जाएं जिन्होंने सही या गलत जवाब दिया है। वैसे ज्यादातर लोग सही जवाब ही दे रहे हैं जो सवाल पूछा गया है आपको बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए। बॉलीवुड सरताज उसके जस्ट बाद। आप सुनते रहिए बीटी विद बीटी, उनकी आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, क्योंकि पहला

तो सलीम मलिक मेरठ से, तरुण कोहली मेरठ से, सीमा मेरठ से. उसके बाद अगला नाम किसका है? ये है नाम, किसका नाम भाई लास्ट में क्यों लिखा आपने? सृष्टि कुमारी पटना से. उसके बाद मोहम्मद इम्तियाज, ये कीर्तिनगर से. विजय कीर्तिनगर दिल्ली में, आपको बता दूं. शालीमार बाग से विजय कुमार, ये भी दिल्ली से. राजकुमार संतानी, के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं. पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं. और कौन है भाई? महाराष्ट्र वाले लाइन से आ रहे हैं. प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से. ये सुनील कुमार यादव का भी मैसेज आया है, कहां से इन्होंने बाद में लिखा है. उमेश ख्याला से. और शंकर गोवा से, पणजी से इन्होंने लिखा है. दिल्ली से, दिल्ली सुल्तानपुरी से राजेश कुमार, प्रियंका, और आगे क्या लिखा है पता नहीं. और अमित मेरठ से लिख रहे हैं. अब्दुल राशिद कीर्तिनगर से लिख रहे हैं. राम प्रकाश कहां से लिख रहे हैं? राजस्थान से. और मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से. हैरी सिंधु भटिंडा से. रोहित शर्मा जयपुर से. दानिश कतौली से. और देवेंद्र ये कहां से, ये कहीं से तो लिख रहे हैं. अंगलोंग कहां पर है भाई? यहां से लिख रहे हैं. ये जफर कहां से लिख रहे हैं? पूर्णिया बिहार से. चित्रंजन सक्सेना भी कहीं नोएडा से लिख रहे हैं. और ये किसका नंबर नाम है? ये बाद में आपने नाम लिखा है इसलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा. उत्तराखंड से मोनिका. आगे से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपना नाम, फिर उसके बाद शहर का नाम, फिर आंसर. ठीक है. ये लोहारपुर नागौर से किसका मैसेज है? आपने भी अपना नाम बाद में लिखा है इसका मतलब. और वो नाम है इरशाद का. अगली बार ध्यान रखिएगा. कुंदन पटना से. मोहम्मद फुरकान सियाल से. कविता उत्तराखंड से. शिव मेरठ से. मीनू अग्रवाल कहां से लिख रही है? मंडी, कौन सी जगह पे है भाई? और अमित विश्वकर्मा दिल्ली से लिख रहे हैं. सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी भी दिल्ली से. ऋषु कटारिया, पवन कटारिया पंजाब से. और किसका मैसेज है? ये मैसेज राजस्थान से आया है, भरतपुर से. और मुबारक खान का ये मैसेज है. इसी के साथ ये गाना लौट कर आती हूँ और लेकर आती हूँ. कोशिश करती हूँ बॉलीवुड सरताज हमारे साथ आए. और बॉलीवुड सरताज, प्लीज बी रेडी. अपने फोन को नेटवर्क में रखिए और डांस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फोन आने ही वाला है.

बिल्कुल आप सबके बारे में सोच के मैंने यही सोचा, यही फाइनली डिसाइड किया कि आप सबके नाम तो लेने बनते हैं। इतने प्यार से आप सबने मैसेज किया है और ज्यादातर सभी सही जवाब हैं। तो चलिए मेरठ वाले लाइन से आ जाइए सब लोग। सबसे पहले मेरठ वाले लोगों के मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे आते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की

0: प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है, सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है, आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी, आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है, यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये है आकाशवाणी और आप सब सुन रहे हैं FM रेनबो। ये बात तो आपने सुन ली, लेकिन आपने बॉलीवुड सरताज की आवाज नहीं सुनी और आप जानना भी चाहेंगे कि आज का बॉलीवुड सरताज आखिर बना कौन है। पहली बात तो जैसे ही मैंने बोला, उन्होंने कहा बाप रे मेरा कॉल मिल गया। और उन्होंने पहली बार जब हमने कभी ट्राई किया था ना तो कॉल ही नहीं उठाया था, क्योंकि अननोन नंबर से वो बात नहीं करती हैं। कौन है वो खुद ही बताती हैं। हेलो।
3: हाँ जी मैम,
2: बहुत बहुत स्वागत कविता आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
3: जी बिल्कुल, धन्यवाद जी।
2: कविता, आपका नाम क्या है?
3: नाम कविता है।
2: और उत्तराखंड वाली कविता कहाँ से बात कर रही है?
3: अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ मैम।
2: दिल्ली में हो? अच्छा, दिल्ली में क्या कर रही हैं आप?
3: कुछ नहीं, बस ऐसे ही, एक तो पेशेंट हूँ और हाउस वाइफ हूँ।
2: पेशेंट है और हाउस वाइफ है, दोनों अच्छी बातें हैं, मतलब अगर पॉजिटिवली लिया।
3: बिल्कुल, बी पॉजिटिव।
2: क्योंकि आपने जो अफेयर बात करी ना, मुझे लगा कि मतलब इस तरह से जब पेशेंट आने लग जाएंगे तो दर्द कहाँ है भाई, कहीं नहीं है।
3: बिल्कुल, जितना हम मैम उस चीज के बारे में सोचेंगे उतना मतलब जो दिक्कत है वो और बढ़ेगी।
2: हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम आपको आई थी और कैसे, फटाफट 2-3 लाइनों में जल्दी से।
3: मुझे रात में दौरा हुआ तो उसके बाद हस्बैंड जी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पता चला टेस्ट वेस्ट हुए तो ब्रेन में ट्यूमर की दिक्कत। ऑपरेशन हुआ मेरा 2023 में जनवरी में। अभी ठीक हूँ मैम।
2: अभी बिल्कुल ठीक हो?
3: जी बिल्कुल।
2: तो ओवरऑल आप इस प्रॉब्लम से निकल आई हैं, है ना?
3: जी बिल्कुल।
2: और आपकी पॉजिटिविटी देखकर लग रहा है कि आपसे बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलने वाली है।
3: जी बिल्कुल मैम, ये सब रेनबो का भी साथ है जो इतने अच्छे से समझाते हैं। और मैम एक चीज और, बात से बने बात वो सबसे जरूरी है।
2: अच्छा, बात से बने बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और बात करेंगे तो बहुत जरूरी बातें निकल कर आएंगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगी, जैसे हमें आपसे मिल रही है बात करके।
3: जी बिल्कुल।
2: तो चलिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। वाराणसी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट कौन लीड एक्टर है, ये हमने सवाल पूछा था आज बॉलीवुड सरताज के लिए।
3: जी, महेश बाबू है मैम।
2: बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ कविता बनती है आज की बॉलीवुड सरताज। कांग्रेचुलेशंस कविता।
3: धन्यवाद मैम।
2: चलिए, ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो से जुड़े रहिए और हमसे जुड़ेंगे और हमें भी प्रेरणा दीजिए और हमसे भी लीजिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
3: ओके,
2: बाय बाय
3: बाय।
2: और इसी के साथ मुझे यानी

कविता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत और जल्द ही आपसे मिलूंगी मैं। और फिलहाल आपको बता दूं कि 1 बजे एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जाने वाला हाउ टू मैनेज द स्क्रीन टाइम एडिक्शन। मिस लहर भटनागर पेरेंटिंग कोच है और ये आपको काफी कुछ गाइड करने वाली है, तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। उससे पहले प्ले इट कूल वेस्टर्न म्यूजिक का शो ऐशानी मित्तल के साथ एंजॉय करिए। एंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। बबीता त्रिपाठी सेज बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक

किसानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। यह वार्ता ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवृद्धि सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Rajkumar from Trishu is saying that his number one travel destination is New Delhi. Wow, you are very welcome to New Delhi. And we have a few more messages. This one is from Amit Vishwakarma from Delhi. He says, "Hey Ashani, it's my first time hearing you and wow, I'm delighted. Everything about today's show is fantastic. Thank you so much, Amit. I'm glad you're liking it." And thank you so much, Hitendra Das, Manish Das, Barsha Das, Sefali Das and Madhav Das for tuning in. Now, let's take a small little break here.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
2: Koyal si teri boli.
3: Aye, aye.
2: Teri chhi nazar mein hai jadoo.
3: Are besure gaane kyon suna rahi ho mujhe?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देशभर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके

सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद के विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: आकाशवाणी का FM रेनबो, आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी। और अब शुरुआत जब होती है रेनबो हेल्पलाइन से, तो फिर टॉपिक भी हमेशा हम कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं जो हम सबकी आम लाइफ से जुड़ा हो, हम सबको हेल्प करे आगे अपनी लाइफ को एकदम स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो तो पेरेंट्स के लिए रामबाण का काम करने वाला है, और मैं खुद इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और टॉपिक बता देती हूँ बहुत ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए, टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन। सबसे पहले तो ये हम सब पेरेंट्स से आज की डेट में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, और हम सब इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा। अब ये एडिक्शन की हद तक, स्क्रीन टाइम एडिक्शन जो बच्चों के लिए हो जाता है, वो सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ये सब हम पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, और बच्चों को भी सुनना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को और इस चर्चा को। हमारी एक्सपर्ट आ चुकी है हमारे साथ बैठी, उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट है मिस लहर भटनागर, जो की है पेरेंटिंग कोच। तो सबसे पहले लहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो पर।
3: थैंक यू so much।
2: तो आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं भी बहुत जानना चाहती हूँ कि आपके पास इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो गई होगी, मुझे लगता है कोविड के बाद से।
3: यस, ये बहुत ही एक बड़ा इशू है,
2: ऐसे केसेस आने ज्यादा शुरू हुए हैं मुझे ऐसा लगता है।
3: कोविड के टाइम पे हमारी लाइफ इतनी डिपेंड हो गई है स्क्रीन और फोन और मोबाइल्स पे, कि उसकी अच्छी भी बात थी कि हम अपनी फैमिली से टच में रह पाए, नहीं तो 2 साल हमारा सारा टच खराब हो जाता। टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है, उसका टेक्नोलॉजी को हमेशा सराहना चाहिए, लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम बच्चों में जो आजकल इशू आ रहा है वो सीधा उनकी ब्रेन और मानसिक डेवलपमेंट पे असर कर रहा है। इसलिए चाहे पेरेंट्स हो चाहे डॉक्टर्स हो, वो सही रीजन से इसको चिंता का विषय है ये, और हमें इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। एक जो हम आजकल गलती कर रहे हैं कि ये हमारे लाइफ में इतना घुस गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब एडिक्शन बन जाता है।
2: बिल्कुल, और इसी एडिक्शन पर हम बात करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि इस पर डिटेल में हम ये जाने कि आखिर ये एडिक्शन है क्या, और हम कब जाने कि ये एडिक्शन हो चुका है ना, ये समझ

0: समझना बहुत जरूरी है, और समझेंगे तभी इस पर काम कर पाएंगे हम पेरेंट्स भी और बच्चे भी। और ना दें उनको फोन मोबाइल या लैपटॉप, ऐसा भी नहीं है पॉसिबल आज की डेट में, लेकिन देने के बाद ये एडिक्शन की हद तक ना जाए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और इसी के लिए हमारे साथ लहर जी जुड़ी हुई हैं, तो हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। एक गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए, इसी तरह से जुड़े रहिए।
1: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिली मल सुलुसुलु मल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिलीगो बगड़दुम चकड़दुम चिकिचकचो।

0: 102.6
1: FM Rainbow 102.6 पर आज का टॉपिक हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन जो बहुत रिलेवेंट है आज के टाइम से और हमारी एक्सपर्ट मिस लहर भटनागर जो कि एक पेरेंटिंग कोच हैं आज इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाली हैं और आप सबको गाइड करने वाली हैं और पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी जो सुन रहे हैं उनके लिए ये शो बहुत काम का हो सकता है अगर आप भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एडिक्शन हो गया है स्क्रीन का कैसे पता लगेगा.
2: हाँ जी,
1: ये है क्या चीज.
2: तो बहुत पेरेंट्स का आजकल यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन देखता है. तो पहले हम बात करते हैं कि ये टाइम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम, कितना टाइम अलाउड होना चाहिए, कितना टाइम ज्यादा माना जाएगा. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 0 to 2 years, 0 to 2 साल के बच्चों में एकदम स्क्रीन नहीं दिखाना है.
1: अच्छा,
2: एकदम जीरो स्क्रीन टाइम. 2 to 5 साल के बच्चे 1 घंटा प्रतिदिन स्क्रीन देख सकते हैं.
1: ओके.
2: और 5 to 8 साल के बच्चे 2 घंटा प्रतिदिन स्क्रीन देख सकते हैं. इस टाइम को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट पे, मानसिक डेवलपमेंट पे बच्चे के असर नहीं पड़ेगा. तो एक तो आपको ये टाइम के अंदर अंदर अगर आपका बच्चा देख रहा है स्क्रीन तो आपको घबराने की जरूरत फिर नहीं है. क्योंकि आजकल देखिए ऐसा हो गया है स्पेशली कोविड के टाइम की स्क्रीन पे हम बहुत डिपेंड हो गए हैं.
1: बिल्कुल.
2: तो 2 घंटा अगर आपका 8 साल का बच्चा है और 2 घंटा देख रहा है तो वो लिमिट में ही माना जाता है. लिमिट में माना जाता है. लेकिन स्क्रीन में आप ये ध्यान रखिएगा कि लैपटॉप, फोन, टीवी सब काउंट होता है.
1: ओके.
2: ठीक है. तो ये अगर इस दायरे में देख रहा है बच्चा तो आपकी चिंता का विषय कम होगा. बट आजकल अनफॉर्चुनेटली ये कभी सर्वे हुआ था, आइडिया था, और उसमें ये पता किया था कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों 9.5 घंटे स्क्रीन देखते हैं रोज. और हमें लगता है हम बहुत कम देखते हैं. तो हमारी जो हमें डेटा है कि हमारा बच्चा इतने घंटे स्क्रीन देखता है, पहले तो उसको सही तरीके से नापना पड़ेगा. हमें लगता है कि सिर्फ 2 घंटे देखा, बट जब आप बैठ के कागज पेंसिल लेके उसको नापेंगे तो 9-9 घंटे भी निकलता है स्क्रीन.
1: और इसीलिए क्योंकि अभी कई बार होता है कि अब बहुत इजी हो गया है कोरोना के बाद से कि जब भी मर्जी स्कूल से आ जाता है मैसेज कि कल ऑनलाइन क्लासेस होंगी.
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: ये कोई भी प्रॉब्लम है तो कल ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इस तरह का मैसेज आ जाता है. तो अब आप क्या कर सकते हैं, 3-4 घंटे क्लासेस हुई उसके बाद वो सारा का सारा होमवर्क आ गया उसी पे,
2: वो भी ऑनलाइन होगा.
1: हाँ, वो भी ऑनलाइन
2: होगा. सबसे पहले पेरेंट्स को पहला स्टेप क्या करना है, आप एक्चुअली नोट डाउन करिए कि आपका बच्चा कितने टाइम स्क्रीन देख रहा है. क्या वो 2 घंटे है, क्या वो 4 है, क्या वो 10 है, या वो 0.5 घंटा है. बट ये एक्चुअल टाइम के हिसाब से नोट करिए. तो ये तो पहला स्टेप हो गया. अब इस स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, अगर ये टाइम लिमिट से ज्यादा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टाइम लिमिट दिया गया है, तो एक तो आप काफी पेरेंट्स को, एक और जो हम गलती कर रहे हैं, हमें लगता है कि इतना भी एडिक्टेड नहीं है बच्चा. तो जब एडिक्शन हमें लगता है वो होता है कि मारपीट शुरू हो गई और रोना, इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया कि पेरेंट्स पे हाथ उठाने लगा अगर स्क्रीन ले लिया. बट उस लेवल तक पहुंचने से पहले भी बहुत अर्ली साइंस भी होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि बच्चा खेलना ना जाना चाहे.
1: अच्छा.
2: दोस्तों के साथ खेलने से मना कर दे, पार्क जाने से मना कर दे और स्क्रीन को चूज करे. वो एक अर्ली साइन है. वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक रेड फ्लैग है. ठीक है. या फिर बच्चा बेसिक हाइजीन, ब्रश, नहाना धोना, ये
1: कई बार ये पेरेंट्स के लिए मैंने देखा है, पेरेंट्स के लिए बड़ा इजी होता है कि वो बच्चा बाहर जाना जाएगा, छोटा बच्चा है, बाहर जाएगा तो पेरेंट्स को भी वहां जाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके साथ. तो वो इससे बेटर ऑप्शन चूज करते हैं कि उसको मोबाइल हाथ में दे दिया, चलो ठीक है तुम तब तक गेम खेलो, और उसके बाद वो इस बात की केयर नहीं करते कि वो बहुत ज्यादा बच्चा एडिक्ट हो सकता है.
2: एक्चुअली हमारी लाइफ भी इतनी बिजी हो गई, इसलिए मैं भी चाहती हूं कि जो भी हम आज टिप्स बात करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, वो प्रैक्टिकल हो, जो एक बिजी अपनी लाइफ में अपना पाए.
1: हाँ.
2: तो डिजिटल बेबी सिटिंग आपने कहा, बहुत सही कहा कि एक बेबी सिटर की तरह हम यूज कर रहे हैं.

0: आजकल. और मैं मानती हूँ कि सबसे जरूरी है एक मदर को, स्पेशली मदर को, थोड़ा टाइम समय अपने लिए मिले. तो अगर आप आधा घंटा एक घंटा फोन दे रहे हैं बच्चे को ताकि आपको थोड़ा चाय पीने का टाइम मिल जाए, तो उसमें ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. बस ये ध्यान रखिए कि WHO के हिसाब से आप उतना टाइम उसको दे रहे हैं. छोटे बच्चे जो बाहर नहीं जाना चाह रहे, कोविड में बाहर नहीं जा पाए काफी बच्चे, तो छोटे बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि बेस्ट तरीका फोन को हटाने के लिए है कि एक उन्हीं के हम उम्र का कोई बच्चा आप घर पे बुला लीजिए चाहे, और घर पे खेल ले वो. एक वन ऑन वन प्ले डेट्स बहुत अच्छी. कोई बच्चा नहीं है जो खेलना नहीं चाहेगा. खेल एक खेल ही ऐसी चीज है जो स्क्रीन को हटा सकता है.
1: और वो ज्यादातर जो ये एडिक्शन होता है वो गेम खेलने की वजह से ही होता है, मुझे लगता है, पढ़ाने की वजह से नहीं होता.
0: स्क्रीन में भी अब आपने बात छेड़ी है तो इसकी हम जरूर बात करते हैं कि स्क्रीन में टाइम तो इम्पोर्टेंट है कि कितना देख रहा है, बट क्या देख रहा है.
1: हाँ, ये
0: बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वीडियो गेम्स बहुत ही ज्यादा ब्रेन के लिए खराब है ना. ये फास्ट मूविंग वीडियो गेम्स हैं, वायलेंस होती है उसमें, और वीडियो गेम्स तो एकदम एब्सोल्युटली नो होना चाहिए. तो कंटेंट क्या देख रहा है वो स्क्रीन पे, वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है.
1: तो मैम जो लक्षण है वो जैसे हम उस पर बात कर रहे थे कि कैसे पता चले कि ये एडिक्शन है, तो ये है कि वो मतलब स्क्रीन की टाइमिंग देखकर या फिर बच्चे का बिहेवियर देखकर कैसे पता चले.
0: एग्जैक्टली, सबसे पहले आप स्क्रीन टाइम नोट कीजिए कि एक्चुअली कितना देख रहा है बच्चा. और अगर चीज है जैसे खेलना सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि जो बच्चा खेल छोड़ के अपने दोस्तों के साथ खेल छोड़ के स्क्रीन देखना चाह रहा है, वो सबसे अर्ली साइन होता है कि वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है. फुल ब्लोन एडिक्शन में अनफॉर्चुनेटली माँ बाप को मारना पीटना स्क्रीन के लिए, टीनेजर्स में सुसाइड की धमकी देना,
1: और कई केसेस भी सुनने में आए हैं कि उनसे मोबाइल लिया गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या वो छलांग लगा दी ऊपर से. ऐसे केसेस भी सुनने में आ रहे हैं.
0: अगर हम अर्ली साइंस को इग्नोर करेंगे तो हम फुल ब्लोन एडिक्शन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे. तो अर्ली साइंस पे कैच करना बहुत जरूरी है.
1: तो चलिए इस पर और चर्चा करेंगे.

0: वैसे वो बापू हो या माँ हो, अगर फोन लेती है तो बच्चों के लिए किसी खलनायक से कम तो लगती नहीं है, है ना मैम?
1: हाँ जी, एब्सोल्युटली।
0: तो अब फोन हो या कोई भी स्क्रीन हो, टीवी हो या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप हो, किसी भी तरह की स्क्रीन का अगर आप देख रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं या गलत प्रयोग कर रहे हैं एक तरह से, तो उसको साइड इफेक्ट तो होगा ही। इसी तरह से एक सवाल भी आया हुआ है, उसको लेते हैं और देखते हैं हमारे जो लिसनर हैं वो क्या करें। हेलो, अभी हमसे जुड़े हैं दिव्यांशु, इनको ऑन एयर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी,
2: हाँ जी मैम, नमस्ते आप दोनों को।
0: नमस्ते, बताइए अपना सवाल बोलिए।
2: जी मैडम, जैसे कोई जैसे आजकल की जनरेशन है वो मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देती है।
0: जी जी।
2: तो मैडम उससे जो हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है ये जानना चाहते हैं।
0: चलिए आप अपना रेडियो बंद कर दीजिए, चलिए हम अभी फिलहाल आपका सवाल ले लेते हैं, बताइए मैम।
1: हाँ जी दिव्यांश जी, आपका सवाल एकदम सही है, आंखों पे असर तो पड़ता है, बट इसके कुछ आसान तरीके हैं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि स्क्रीन को हम एकदम जीरो तो कर नहीं सकते, है ना? तो हम अपनी आंखों को कैसे बचाएं? जो आंखों के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि तीन चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए जब आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है। रूल नंबर वन इज जितना बड़ा स्क्रीन उतना बेटर, तो मोबाइल से बेटर होता है टैबलेट, टैबलेट से बेटर लैपटॉप, लैपटॉप से बेटर टीवी। जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना आंखों पे असर कम पड़ेगा, आंखें कम परेशान होंगी। दूसरा है, एक जो स्क्रीन जहां देख रहा है बच्चा वो कमरे की लाइटिंग, एक बहुत अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए वो कमरा एकदम, तो बहुत अच्छी तरह लाइटिंग रखिए। और तीसरा और सबसे आसान और बहुत असरदार फॉर्मूला है 20-20-20, एक फॉर्मूला है जो आई डॉक्टर्स बोलते हैं। इसका मतलब है 20-20-20 हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर कोई चीज पे फोकस करें। तो सपोज आपका बच्चा अपना टीवी देख रहा है या फोन देख रहा है, उसके फोन में टाइमर लगा दीजिए 20 मिनट बाद जो बचेगा, और 20 मिनट बाद उसको समझाइए कि विंडो के बाहर देखिए, कोई दूर ऑब्जेक्ट पे फोकस करे, 20 फीट दूर ऑब्जेक्ट हो और 20 सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट को देखता रहे, तो 20 सेकंड का आपकी आंखों को ब्रेक मिलेगा। और हर 20 मिनट बाद अगर आप ये ब्रेक देंगे अपनी आंखों को, तो ये जो ड्राई आईज हैं, इचीनेस है और आंखें कमजोर होती हैं वो भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो एक जीरो नंबर का चश्मा भी दे सकते हैं बच्चों को जब वो स्क्रीन देख रहे हैं, बट ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। एक और जो असर होता है, आप क्योंकि आंखों की बात कर रहे हैं, पोस्चर का भी बहुत असर हो रहा है बच्चों में, बहुत अर्ली एज पे सर्वाइकल कंधा में दर्द, शोल्डर में दर्द शुरू हो रहा है क्योंकि वो झुक जाते हैं। अगर आपने कभी देखा हो फोन देखते देखते पोस्चर बहुत खराब हो जाता है, बच्चे एकदम झुक के फोन देखने लगते हैं, पीठ सीधी नहीं रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। जैसे हम लोग 40-50-60 साल पे जाके हमें सर्वाइकल हो रहा है,
0: इवन बच्चे लेट के देखते हैं।
1: हाँ, बच्चे लेट के देखते हैं, तो पोस्चर बहुत जरूरी है। शोल्डर और सर्वाइकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं टीनेजर्स में, तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, उसे कहते हैं स्टैंडिंग टेबल। बच्चा खड़े होके आई लेवल पे उसके स्क्रीन हो, तो सपोज वो उसकी टेबल है, तो चेयर मत दीजिए उसको, खड़े होके लैपटॉप

0: देखे या फोन देखे और उसका फोन आई लेवल पे हो, तीन चार किताबें रख दीजिए उसके ऊपर फोन रख दीजिए ताकि उसकी आंखों के एकदम सामने फोन हो और वो खड़ा होकर देख रहा है। बच्चे एक तो जब खड़ा होकर देखेगा तो पोस्चर पे असर नहीं होगा, कंधे दर्द नहीं होंगे और वो देखेगा भी कम क्योंकि थक
1: और डिस्टेंस भी मैटर करता है मैम। कितनी दूर से देख रहा है?
0: हाँ, करीब आपका 30 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, एकदम आंखों के पास नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आई डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं अगर आंखों में पानी आ रहा है या उसको दूर की चीजें दिखनी कम हो गई है, नजर कमजोर हो रही है, तो जरूर अपने आई डॉक्टर से बात करिए। बट ये तीन चार चीजें आप अगर फॉलो करेंगे। एक और चीज है जो असर हो रही है, जो साइड इफेक्ट आपने बात किया बबीता जी, तो नींद, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, स्लीप बहुत कम हो रही है और इसका डायरेक्ट असर है स्क्रीन का।
1: वो क्या? अच्छा, स्क्रीन की वजह से नींद नहीं आ रही।
0: स्क्रीन में भी एक ब्लू लाइट होती है, चाहे आप लैपटॉप देखें चाहे फोन देखें, एक उसमें ब्लू लाइट निकलती है तो उससे नींद पे असर होता है। क्योंकि दिमाग को कैसे पता चलता है कि अब सोना है? बाहर की रोशनी के हिसाब से। जब बाहर अंधेरा होता है दिमाग सिग्नल देता है बॉडी को कि देखो अब अंधेरा हो गया, अब सोने का टाइम है। बट अगर आप अंधेरे के बाद लैपटॉप देख रहे हैं तो वो उसकी लाइट को दिमाग डे लाइट समझता है, उसको लगता है अभी भी दिन है, तो दिमाग सिग्नल ही नहीं देता, तो इसलिए नींद आती ही नहीं है अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं। इसका एक बहुत आसान तरीका है, सोल्यूशन है, हर एक स्क्रीन पे आजकल एक ब्लू लाइट फिल्टर आता है। आप हर एक स्क्रीन पे जब भी अपने बच्चे को कोई स्क्रीन दे रहे हैं उसमें ब्लू लाइट फिल्टर हमेशा ऑन रखें। तो ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल और आसान तरीकों की आज हम और बात करेंगे।
1: बिल्कुल बात करेंगे। और स्क्रीन टाइम जो हैबिट है इसको इम्प्रूव करने के लिए या अच्छे करने के लिए क्या करें? रांची से अनूप कुमार का मैसेज आया और इस पर हम लगातार बात कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से, तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी जो समस्या है वो काफी हद तक उसका समाधान हो गया होगा और आगे सुनते रहिए। और दीपक का मैसेज खगड़िया बिहार से आया है, इन्होंने खगड़िया बिहार से इन्होंने रेन शो की तारीफ की है लेकिन अपना सवाल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैम नमस्कार, मैं मोबाइल पे गेम खेलने की बुरी आदत मुझे हो गई है जिसकी वजह से मेरी आंख में जलन होने लगी है, मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं? ये इन्होंने लिखा हुआ है महेंद्र प्रताप सिंह ने। मेरे ख्याल से आप पता नहीं ये टीनेजर हो सकते हैं या बच्चे भी बच्चों में हो सकते हैं काउंट, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है तो मुझे लग रहा है किसी टीनेजर ने या फिर बड़ों ने किया।
0: महेंद्र जी को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि उनको रियलाइज हो रहा है कि उनको एडिक्शन है। बहुत लोगों को तो ये रियलाइज ही नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा पड़ाव तो पार कर लिया है आपने ये रियलाइज करके कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। इस पे समाधान पे मैं जरूर आऊंगी महेंद्र जी। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हम पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, हम स्क्रीन या बच्चे इन दोनों को दोष दे रहे हैं और इन दोनों का दोष है ही नहीं। आप मेरे को बताइए बबीता जी, अगर हम जब छोटे थे एक दो साल के थे तब अगर स्क्रीन का आविष्कार हो गया होता तो हम भी एडिक्ट होते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: एकदम एडिक्ट होते हैं। तो ये दिखाना कि आपके पेरेंट्स एकदम महान है और आप एडिक्टेड हो, ये एक तो रिलेशनशिप पे बहुत असर पड़ा है। बहुत पेरेंट और बच्चों की रिलेशनशिप स्क्रीन की वजह से तनावपूर्ण हो रही है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि स्क्रीन से बचाते बचाते आप बच्चे को
1: अपने रिलेशन। बिल्कुल
0: राइट।
1: और कई बार यही हो रहा है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हम पेरेंट्स बताने में ही लगे रहते हैं कि हम किस तरह से आपसे बेटर हैं।
0: तो थोड़ा सा या रहे हैं इसमें पर्सपेक्टिव, इसको देखने का नजरिया चेंज करने का मैं एक तरीका बताना चाहूंगी। सबसे पहले स्पेशली पेरेंट्स को सुनना चाहिए कि अगर आप किसी को, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, सपोज आपको हील्स पहनना बहुत पसंद है, ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, और कोई आपको बोले कि अरे तुम तो हील्स पहनते हो, तुम तो बहुत खराब लड़की हो, तुम तो बहुत खराब लड़की हो, अब आपको पसंद तो बहुत है, आपको गिल्टी लगेगा। स्पेशली अगर आपकी कोई माँ जैसा हो जो हमारे दिल के सबसे करीब है, वो आपको ये बोलते रहे कि तुम ये करते हो ना इसलिए तुम बहुत खराब हो, तो आपको कितना गिल्टी फील होगा, बट आपको पसंद तो बहुत है। राइट। तो आपको ये समझना है कि बच्चों को स्क्रीन पसंद क्यों है। क्या है ऐसे कि हर घर में, हर दुनिया में, हर देश में बच्चे स्क्रीन को पसंद कर रहे हैं? कुछ तो होगा स्क्रीन में जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले वो समझिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेके आप उसको फिर उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो स्क्रीन बच्चों को इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसमें स्टोरीज होती है, कलरफुल होता है, फास्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है ना। तो यही सारी चीजें, कौन सी ऐसी चीज है जो स्क्रीन के अलावा किसी और चीज में भी उसको यही सारी चीजें मिले बच्चे से? सबसे आसान तरीका है बच्चे से पूछना कि आप किस चीज के लिए स्क्रीन छोड़ सकते हो।
1: और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रही, मुझे लग रहा है

सुनती जाऊं, लेकिन क्योंकि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो लंबा हो रहा है और मुझे गाना चलाना भी जरूरी है, तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और लौट कर आते हैं। और पेरेंट्स किस तरह से हैंडल करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी अच्छी बातें और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम सबसे कहीं ना कहीं हम सबको टच करता है, हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन। हमारे साथ एक्सपर्ट मिस लहर भटनागर हैं, जो लगातार हम सबको कोच कर रहे हैं, गाइड कर रही हैं, पेरेंटिंग कोच हैं भी वो। फिलहाल मैं आपके साथ हूं बबिता त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। तो अगर इस तरह की हेल्प चाहिए, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो फटाफट मिस मत करिए इस चांस को।

0: FM Rainbow 102.6.
1: रेनबो हेल्पलाइन और टॉपिक हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम एडिक्शन. तो मिस लहर भटनागर जी हमारे साथ हैं जो कि पेरेंटिंग कोच हैं और हम से बहुत डिटेल में इस पर चर्चा कर रही हैं कि किस तरह से लक्षण पहचाने, किस तरह से जाने कि हमें क्या करना है और वो कम पड़ रहा है. कितना भी आप जानिए अपने आप को और बच्चों को सुधारने के लिए वो कम ही पड़ता है. और मैम से मैं और कुछ जानना चाहूंगी कि किस तरह से अब एडिक्शन हो गया, पहचान में आ गया, लेकिन हम करें क्या और किस तरह से इस चीज को मैनेज करें कि क्योंकि स्क्रीन से अलग भी नहीं कर सकते हैं, ना अपने आप को ना बच्चों को, लेकिन मैनेज कैसे करें ये बहुत जरूरी है.
2: हाँ जी, तो एक

0: तो सबसे पहला रूल है कि अर्लियर द बेटर. जितना छोटा बच्चा है उस टाइम से अगर आप मैनेजमेंट शुरू करेंगे तो आपका लाइफ आसान होगी. छोटे बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, रोते हैं तो मन करता है दे दो
1: जी,
0: है ना, तो वो टेम्पटेशन में नहीं जाना. बट इसको अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में जाएंगे. सबसे पहले मैं अपने जो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कोचिंग के लिए, उनको मैं कहती हूँ कि हम पूरे दिन ही कहते हैं कि स्क्रीन मत देखो मत देखो मत देखो, इससे अच्छा ये बोलिए कि स्क्रीन कब देखो.
1: ओके,
0: तो वो टाइम फिक्स कर दीजिए कि आप स्क्रीन देख सकते हो 2 से 3 और शाम को 6 से 7, जो भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपको सूट करता है. तो स्क्रीन मत देखो की जगह आप कन्वर्ट करो इसको स्क्रीन कब देखो, ये तकनीक आप अपनाइए. क्योंकि बच्चे को ये बोलना कि अभी आप स्क्रीन देख सकते हो, वो ब्रेन में मैसेज जाएगा तो वो ज्यादा आसान है उसके लिए समझना. मत देखना, उसमें आप विलेन बनते हो. राइट, तो एक तो सबसे पहले स्टेप वन है, आप टाइम फिक्स कर दो कि बेटा हम अब कल से ना स्क्रीन आप जरूर देखिए बट इस टाइम देखिए. तो आप 2 घंटे चाहे दिन में 1-1 घंटा चाहे आधे आधे घंटे के 4 स्लॉट जैसे भी आपको ठीक लगता है, बट आप वो टाइम फिक्स कर दीजिए. और एक बार फिक्स कर दिया उसके नेक्स्ट स्टेप है जो उस टाइम के बाद जो बच्चे ने करना है वो उसकी फेवरेट एक्टिविटी हो. जैसे अगर बच्चे को पेंटिंग पसंद है या उसको बेकिंग पसंद है या उसको रीडिंग पसंद है, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि बच्चे से पूछे कि कौन सी वो एक चीज है जो तुम्हें स्क्रीन जितनी पसंद है, स्क्रीन से ज्यादा नहीं, चलिए स्क्रीन जितनी पसंद है. तो वो एक दो चीजें बच्चे से जरूर पूछिए. तो कहेगा या तो मेरे को खेलना पसंद है या पजल्स करना पसंद है या मैं पेंटिंग करना पसंद है या आपके साथ मम्मी के साथ खेलना मेरे को बहुत पसंद है. तो ऐसी 2-3 चीजें याद रखिए जो आपके बच्चे को उतनी ही पसंद है जितना स्क्रीन है. और जो आपका टाइम है स्क्रीन का, सपोज 2 से 3 आपने टाइम दिया है, तो 3 बजे से 4 बजे तक वो चीज रखिए जो उसकी फेवरेट चीज है. तो वो फिर स्क्रीन छोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि उसको पता है स्क्रीन के बाद मेरी फेवरेट चीज आ रही है. जो स्क्रीन जितनी ही पसंद है मेरे को. सेकंड स्टेप ये हो गया. थर्ड स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी हैबिट चेंज करने में उसके मोटिवेशन. हमें भी पता है कि हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, बट उसके लिए मोटिवेट होना, अगर हम मीठा खा ले तो गिल्ट फील होता है, बट अगर हम मीठा छोड़ दें और फिर हम देख रहे हैं कि वजन कम हो रहा है तो वजन कम होना एक मोटिवेशन है. तो वी आर मोर मोटिवेटेड कि हाँ मेरा वजन कम हो रहा है चलो मैं मीठा छोड़ देती हूँ. तो हैबिट चेंज में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है. और ये मोटिवेशन आपने अपने बच्चे को भी देना है. एक तो आपने मोटिवेशन दिया कि स्क्रीन के बाद आपकी फेवरेट चीज करेंगे, वो भी मोटिवेशन है. बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन टेक्निक है जो साइकोलॉजी में, जो मानसिक हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम.
1: ओके,
0: रिवॉर्ड सिस्टम मतलब जब बच्चे ने, सपोज आपने टाइम फिक्स किया 2 से 3 और 6 से 7, जिस दिन बच्चे ने ये टाइम में ही स्क्रीन देखा उसको एंड ऑफ द डे एक रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि आपने टाइम में देखा. जिस दिन नहीं देखा, क्योंकि होगा ऐसे दिन होंगे जिसे नहीं देखा, उस दिन आपको पनिश नहीं करना है, बस वो रिवॉर्ड नहीं देना है. ठीक है, तो सपोज आपने बोला कि बेटा अगर आप 2 से 3 और 6 से 7 का टाइम फॉलो करोगे ना, तो सोने से पहले मैं आपको या तो एक चॉकलेट दे सकती हूँ या मैं आप
1: और मुझे हंसी इसलिए आ रही कि वो देखा क्या जाता है, एज अ रिवॉर्ड हम मोबाइल ही देते हैं.
0: नहीं नहीं, हाँ तो मोबाइल को रिवॉर्ड,
1: खाना खाना देंगे तब मोबाइल दिखाएंगे या टीवी दिखाएंगे,
0: हम आधे घंटे रात को खाने के बाद वॉक जाएंगे एज अ फैमिली. सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है जो मेरे लिए और मेरे पेरेंट कोचेज जो आते हैं पेरेंट्स उनके लिए काम करता है, फैमिली गेम नाइट. बच्चों को माँ बाप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनकी फेवरेट चीज होती है. तो सोने से पहले आपने कोई एक लूडो का गेम खेल लिया, तो इसको रिवॉर्ड की तरह यूज कीजिए कि बेटा जिस दिन आपने 2 घंटे का अपना समय फॉलो किया ना, उस दिन रात को हम लूडो खेल के सोएंगे.
1: ओके,
0: ठीक है, बट जिस दिन नहीं किया, ये नहीं कि आप उसको पनिश कर रहे हो. तो नो पनिशमेंट ओनली रिवॉर्ड, बहुत अच्छी मोटिवेशन टेक्निक होती है
1: जी.
0: और एक और चीज है जो आप अल्टरनेट क्या क्या यूज कर सकते हैं. आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे आप हर घर में आजकल कोई ना ऑडियो में जाइए, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो ऑडियो फॉर्मेट में है.
1: मेरे पास एक मैसेज भी है कि हम AIR को सुन सकते हैं, फिर रेनबो को सुन सकते हैं.
0: एब्सोल्युटली,
1: के लिए छुड़ाने जी बिल्कुल. वेस्ट बंगाल से बनश्री का मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है कि दोनों मैम को नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि एडिक्शन क्या बड़ों को भी होती है, और मतलब 30 या उससे ज्यादा एज शायद इन्होंने लिखी है, इसके लिए क्या मेंटली डिस्टर्ब या हेडेक भी होता है बड़ों को या छोटों को?
0: एब्सोल्युटली हम आज फोकस कर रहे हैं बच्चों पे, लेकिन एडल्ट्स भी उतने ही एडिक्टेड हैं। जो सर्वे की मैं बात कर रही थी, इंडियन एडल्ट्स भी 9 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पे

होते हैं, हमारे काम पे असर पड़ रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स पे असर पड़ रहा है, तो एडल्ट्स के लिए भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है ये. एंड अगर आपको लग रहा है आप या आपके घर में कोई है जो चिड़चिड़ा हो जाता है अगर फोन ना मिले या आंखों से पानी आ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो जरूर आप उनको ध्यान दिलाइए कि ये एक एडिक्शन है. और जो मैं बच्चों के लिए चीजें बोल रही हूँ वो हम पे भी अप्लाई करती है. आप अपनी हॉबीज पे ज्यादा फोकस करिए, ट्राई टू टेक आउट टाइम, एंड वो चीजें करिए जो आपको पसंद है. एक जो बहुत

0: पे भी अप्लाई करती है. आप अपनी हॉबीज पे ज्यादा फोकस करिए, ट्राई टू टेक आउट टाइम एंड वो चीजें करिए जो आपको पसंद है. एक जो बहुत अच्छी चीज मेरे लिए काम करती है और जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनके लिए भी, फॉर एडल्ट्स, हमारे फोन पे, एक तो अगर आप सोशल मीडिया है आपके फोन तो उसके आप सबसे पहले जाके नोटिफिकेशन बंद करिए, क्योंकि अच्छा. हम कुछ काम कर रहे हैं और वो टिंग आवाज आती है तो हमारा पूरा फोकस खराब हो जाता है. तो वो जो भी आपके सोशल मीडिया है, ईमेल्स है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए. आप देखेंगे कि आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो, जो काम आप 3 घंटे में कर रहे थे वो आप 1-1 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि आपका कम्प्लीट फोकस होगा और वो टिंग वाली आवाज आपका ध्यान बटाएगी नहीं.
1: वैसे काफी सोल्यूशंस हम ले चुके हैं. मैं बता देती हूँ, रघविंदर सिंह का मैसेज सुभाष नगर से आए, इन्होंने भी लिखा है कि ये स्पोर्ट्स कोच हैं और अब ये फील करते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स के लिए कम ध्यान देते हैं, मोबाइल्स और गेम्स में ज्यादा ध्यान देते हैं.
0: Absolutely.
1: जो मोबाइल के अंदर होते हैं या स्क्रीन पर होते हैं.
0: स्पोर्ट और खेलना इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अगर बच्चा 90 मिनट दिन में खेल रहा है वो थक हार के सोएगा, स्क्रीन नहीं देखेगा. तो स्पोर्ट सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है. आपको कोचिंग में नहीं डालना है तो मत डालिए, बट चाहे पार्क में बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं, तो 90 मिनट दिन में, कम से कम 90 मिनट बच्चे को खेलना है. उससे इरिटेशन भी कम होती है, मोबाइल से रिलेटेड जो इरिटेशन सी हो जाती है, और मोबाइल देखना भी कम होता है क्योंकि बच्चा थक जाता है.
1: आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्क्रीन टाइम एडिक्शन को मैनेज करें, और काफी बात हो चुकी है, थोड़ी बातें अभी और रह गई हैं, तो उसको इस गाने के बाद लौट कर आते हैं और फिर कवर करते हैं.

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और यहाँ पर रेनबो हेल्पलाइन शो चल रहा है और आज के टॉपिक पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आप सबके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं और ज्यादातर मैसेजेस ऐसे हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। ऐसा क्या कोई जादू बता दें वो जिससे हम हैंडल कर लें, ये तो मतलब

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने

0: भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णय चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवी के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। ये निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया

0: कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
1: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
2: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार केरल माहे पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र सिक्किम तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असम मेघालय पूर्वी राजस्थान हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली में कुछ स्थानों पर

चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पे प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आपके साथ। आज हमने बात की पति पत्नी और पेट के बारे में। जी, आपका पेट जो है ना, भले ही उसके चार पैर हों या फिर उसके दो पंख भी हो सकते हैं, पेट किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन बात सारी ये है कि पेट जो है ना वो केवल एक प्राणी नहीं होता, बल्कि वो एक जिम्मेदारी होता है जो एक कपल को ना टीम वर्क सिखाता है। और साथ ही साथ कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सभी कहते हैं अक्सर कि भाई जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस जो है वो हमारे रिश्तों पर भी असर देता है, और हमारे रिश्ते भी अक्सर जो है ना उसकी वजह उसका शिकार बन जाते हैं, कहना चाहती हूं मैं। तो ऐसे में आपका इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर आपका पेट होता है कि अक्सर उसको देखने के बाद आप अपनी आधी से ज्यादा परेशानियां तो भूल ही जाती हैं, तो ऐसे में उस स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है जो आपके रिश्ते पर असर डालती है, उसको कमजोर बनाती है। ये सिर्फ एक पेट नहीं होता, एक जिम्मेदारी होता है। टीम वर्क के साथ साथ वो आपको बिना किसी शर्त के प्यार करना सिखाता है, क्योंकि निस्वार्थ प्यार जब किसी इंसान को मिलता है ना, तो उसके अंदर से भी कुछ उसी तरह के रिएक्शंस जो है ना बाहर आते हैं। भाई हम भी तो आखिर इमोशनल प्राणी है ना, और हमारे इमोशंस जो है अक्सर वो इस चीज पर निर्भर करते हैं कि सामने वाले की तरफ से हमें किस तरह की जो है वाइब्स आ रही हैं। एंड ऑब्वियसली जब घर में एक पेट होता है तो वो जिम्मेदारी और वो वाइब्स ना कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो एक छोटा सा जो दोस्त होता है ना आपका, ये वो अक्सर आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स की या फिर आपके फैमिली के एटमॉस्फेयर की, भाई असर तो बहुत डालता है, और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छा असर डालता है। फिलहाल आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका समय जो है वो खत्म होने को है, तो मैं सबसे पहले जल्दी से आपको याद दिला देती हूँ कि अगला प्रोग्राम जो आप सुनने जा रहे हैं वो क्या है। टीम वर्क की बात कर रही थी मैं, तो जी हमारी टीम ने भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो है ना वो बना रखा है, और नाम है उसका रेडियो डॉक्टर, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपकी समस्याओं से यानी कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उससे जुड़े समाधान प्रस्तुत करता है। रेडियो डॉक्टर अगला प्रोग्राम 3 से 4 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर सुनेंगे आप। आज जिस विषय पर बात होगी वो बहुत ही जरूरी विषय है, वो है गर्मी से होने वाली परेशानियां और सावधानियां। जी, हीट रिलेटेड इलनेसेस एंड प्रिकॉशंस। एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर संजय कुमार, आप प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में, और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम जो है वो आप जरूर सुनिएगा। गर्मी बढ़ रही है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और उसके लिए सावधानियां और ये सारी जो चीजें आपको बताई जाएंगी, जो टिप्स बताई जाएंगी, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल स्वाति को दीजिए इजाजत, हम कदम थापस यहीं तक।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्रांड न्यू एडिशन में। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नेहा, और आज हम हमेशा की तरह बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हम रोज देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और सूर्य देव अपने उरूज पर रहते हैं हर रोज। दिन का टाइम तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है काटना और परेशानी तो रात में भी होती है। अब ऐसे में गर्मियां जब आती हैं और गर्मियां जब अपने चरम पर होती हैं तो बहुत सी ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेडियो डॉक्टर में आज हम बातें करेंगे हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, किस तरह से इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और ये तमाम सारी बातें जानकारियां हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब आज का जो विषय है बहुत ही कॉमन सा है, हर साल गर्मियां होती हैं और बहुत सी परेशानियां हम फेस करते हैं, तो मजा आएगा आज के कार्यक्रम में बात करते हुए।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि ये समय बिल्कुल सही समय चुना है आपने, क्योंकि है ना, और अब ये यहां से आप पीछे देखने का मौका नहीं है।
2: और हर बार ऐसा लगता है कि इस बार गर्मियां थोड़ी ज्यादा पड़ने वाली हैं।
3: जी
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अमूमन हम आम तौर पर देखते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टियां लगना या फिर पेट की बड़ी सारी समस्याएं हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर का कई लोगों का लो हो जाता है, तो क्या ये भी हीट रिलेटेड इश्यूज हैं?
3: जी देखिए, इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो आपको फीवर के साथ ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, लूज मोशंस हो गया, वॉमिटिंग हो गया और फीवर साथ में है, तो इसमें या तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि पेट का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर ये हीट रिलेटेड इलनेस का भी सिम्टम्स हो सकता है जिसमें आपको हेडेक, चक्कर, स्वेटिंग और घबराहट इस तरह का, साथ साथ में नौजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सारे सिम्टम्स भी हीट रिलेटेड, और साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा होने लग जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स हीट रिलेटेड इलनेसेस से भी हो सकता है। तो इसमें ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि ये इन्फेक्शन से है या हीट रिलेटेड, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है।
2: लेकिन इस बात पर हम गौर फरमाएंगे, बहुत सारी बातें हमें आपके साथ आज कार्यक्रम में करनी है। श्रोताओं जब तक आप हमें फोन मिला रहे हैं और मैसेजेस भेज रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म हासिल से अभिजीत की आवाज में सिर्फ आपके लिए प्ले हो रहा है रेडियो डॉक्टर में।

0: वैसे ये बिल्कुल सही बात है कि आंखें भी हो सकती हैं दिल की ज़बान। साथ ही एक डॉक्टर की नज़र से अगर देखा जाए और सोचा जाए तो आंखों से पता चलता है कि आपकी सेहत कितनी दुरुस्त है। वेल, आज बात कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, किस तरीके से इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, साथ ही ट्रीटमेंट क्या रहेगा। और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, गर्मियों की बातें हम शुरू कर ही चुके हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी बहुत ही कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो गर्मियों में देखी जाती हैं।
1: हाँ, देखिए, इसमें ये हीट रिलेटेड इलनेस जो है ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। माइल्ड डिजीज की बात करें, फिर मॉडरेट और सीवियर हीट रिलेटेड इलनेस हो सकता है। तो माइल्ड की बात करें तो सबसे पहले हमारा जैसे जो गमोरिया हमारे निकलती हैं, जिसको प्रिकली हीट भी कहते हैं या हीट रैश भी कहते हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो हीट क्रैम्प्स में क्या होता है कि आपके मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, तो वो भी माइल्ड कैटेगरी में आता है। या फिर पैरों में सूजन हो जाना, दोनों पांव में हीट की वजह से दोनों पांव सूज जाते हैं,
0: तो वो चलने में भी काफी तकलीफ
1: होती
0: है।
1: जैसे क्योंकि ब्लड वेसल्स आपके जो हैं जो वो डायलेट हो जाते हैं, ब्लड नीचे ग्रेविटी से बैठ जाता है, उसके वजह से थोड़ा सा सूजन आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा सूजन आ जाती है। ये सारे माइल्ड केसेस में आते हैं। फिर जो इसे मॉडरेट केसेस में आएंगे, आपके जैसे हीट के साथ आपको सिंकपी हो जाता है, है ना, जैसे हीट में आप चक्कर खा के एकदम से गिर गए और फिर एकदम से उठ भी गए, तो उसको हीट सिंकपी कहते हैं। और इसके अलावा फिर अगर हम हीट एग्जॉशन की बात करें, उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा गफलियत में जाने लग जाता है आदमी, तो वो हीट एग्जॉशन होता है। और हीट स्ट्रोक होता है जब वो पूरी तरह गफलियत में चला जाता है और होशो हवास खो बैठता है, जिसको कहते हैं हम लू लग गई है। तो ऐसे कंडीशन को सबसे सिवियर हीट रिलेटेड इलनेस, इसलिए इसको स्ट्रोक भी कहा गया है, हीट स्ट्रोक, क्योंकि इसकी जो मोर्टेलिटी है यानी कि जो डेथ रेट है वो काफी हाई होती है। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं जो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से भी इसकी भी मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट काफी हाई होती है।
0: सर, ये कितना कॉमन है? जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत ही बड़ा हेल्थ हैजार्ड हो सकता है गर्मियों में, हीट स्ट्रोक की आप बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक से भी शायद ये रिलेटेड है, तो ऐसे में ये कितना कॉमन है जो लोगों में ये समस्या हो जाती है?
1: देखिए, इसमें काफी कॉमन है और कई बार तो ये पता भी नहीं चलता है हम लोग, क्योंकि ये हीट की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से, मैंने बताया, क्योंकि इसमें भी फीवर होता है और कई सारी चीजें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इन्फेक्शन में आमतौर पे हम देखते हैं कि, तो इसमें ये पॉइंट

0: पॉइंट से कहना कि हीट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सेंसिटाइज अगर डॉक्टर्स नहीं है या पेरिफेरल एरिया में सेंसिटाइजेशन नहीं है तो उसमें थोड़ा सा डायग्नोसिस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये, लेकिन ये काफी कॉमन है। अभी आप देखेंगे 2015 में 2500 के आसपास लोग की डेथ हुई थी और हर साल हम देखते हैं कि 500 से 700 लोग इसके डेथ के शिकार होते हैं पूरे इंडिया भर में। तो ये खासकर वो लोग होते हैं जो जिनका घर नहीं होता है या जो स्ट्रीट पे मजबूर हैं काम करने के लिए, डेली वेजर्स हैं या वेंडर्स हैं या जो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं या फिर एल्डरली जो हाई रिस्क में होते हैं, एल्डरली या बहुत छोटे बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल हो गई या फिर कोई मेडिकेशन, जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले से ही ग्रसित हैं, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, तो उनको उनके टॉप पे फिर ऊपर से ये एक हीट की जो समस्या है, अगर ये भी उनके साथ मिक्स हो जाती है तो वो फिर उसको झेल नहीं पाते।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, लेकिन एक कॉलर उससे पहले लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मैम नमस्ते।
1: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते मेरी तरफ से।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: सर मेरा नाम गीता है और मैं मेरठ जिले से बात कर रही।
1: गीता जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमें बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं।
2: जी मैम, मेरा बीपी की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, मतलब अगर मैं ज्यादा कुछ सोच लूं तो मेरे एकदम बीपी डाउन हो जावे और कभी लो कभी हाई, बस तो समझ में नहीं आता, कभी मतलब दिल घबराने लग जाए तो कभी शर्म दर्द बन जाए, कभी की ऑटोमेटिक सारा ही शरीर मेरा बिल्कुल डाउन हो जावे।
1: अब आप डॉक्टर साहब की बात सुनिए।
2: भी
1: जी जी, आपकी समस्या
2: भी काम करने बंद कर दे कभी कभी।
1: आपकी बात हमने सुन ली, अब आप डॉक्टर साहब की बात पर ध्यान।
0: जी जी, देखिए जो बीपी लो हो जाता है जो आपको कह रहे हैं कि काफी सोचने पे या इस तरह से, तो पहली बात तो आप सोचे नहीं ज्यादा, है ना, आप खुश दिल रहे हैं, खुश मिजाज रहे हैं और ज्यादा कोई भी चीज को ज्यादा ध्यान सोचे नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से भी देखिए वो फिर आपके दिमाग पे क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते ही हैं, तो फिर इस तरह से आदमी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है, तो इसको आप दिमाग से निकालें, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखें। लो बीपी जब भी हो, आपको ऐसा लगे कि चक्कर आ रहा है या ये हो रहा है, तो आप एक तो अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट है नहीं है तो आसपास चेक करा के, और अगर वाकई में लो है तो उसके लिए आप चीनी और नमक का पानी सेवन ज्यादा लें, तरल पदार्थ आपको ज्यादा लेना है, यानी कि पानी का सेवन ज्यादा करना है, और अगर बीपी हाई है तो उसको आप डॉक्टर से मिलके बीपी का उसका इलाज आप परसिस्टेंटली देखेंगे तो उसका भी इलाज आप डॉक्टर से मिलके ले सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी फोन करने के लिए। श्रोताओं इनकी तरह आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर एक बार फिर से दोहरा दूं आपके लिए, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड रहेगा, नंबर है 2342-1084 और 2342-1080। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया है, इन्होंने नाम पता तो नहीं बताया बट पूछना चाहते हैं कि लू के प्रभाव की पहचान कैसे होती है।
0: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप नाम बताते तो और भी अच्छा रहता। लू देखिए जो हीट स्ट्रोक कहते हैं या हीट एग्जॉशन भी उसी कैटेगरी में आ जाता है, कि देखिए जो कॉमन सिम्टम्स जो हीट रिलेटेड इलनेस होता है वो तो है हेडेक हो गया, आपको थोड़ा सा चक्कर आने लग जाए या फिर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, उल्टियां हो रही हैं, है ना, थोड़ा सा दस्त भी लग सकते हैं और पसीने खूब आ रहे हैं, मुंह सूखने लग गया, आपका जो हार्ट रेट है वो तेज हो जाएगा, सांसें आपकी ज्यादा तेज चलने लग जाएंगी, तो ये सारे सिम्टम्स तो नॉर्मली आपको जो मॉडरेट लेवल तक का, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की या हीट एग्जॉशन की तो इसमें जो आपका जो गफलियत होना ये चालू हो जाता है, आप अपने होश हवास में नहीं रहते, थोड़ी बहुत गफलियत है तो उसको हीट एग्जॉशन कहते हैं, साथ में आपको स्वेटिंग भी बहुत आ रही है, पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं आपके, तो हीट एग्जॉशन ज्यादातर ये कहते हैं। इसमें फिर अगर आपको दौरे भी पड़ने लग जाएं साथ में और आप डीप कोमा में चले जाएं और आपकी स्वेटिंग बिल्कुल रुक जाए और टेम्परेचर आपका बहुत तेज आगे बढ़ने लग जाए तो इसको फिर हम लू लगना कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर 105 से भी ज्यादा, 106, 107 इतना तक भी चला जाता है, तो इस तरह के जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो हम कहते हैं इसको कि लू लग गई है, यानी हीट स्ट्रोक हो गया।
1: डॉक्टर साहब अभी जो आपने सारे सिम्टम्स बताए ये कितने दिनों तक रह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को नोट करने के लिए कि भाई 3 दिन से मुझे ये परेशानी हो रही है या 4 दिन से हो रही है, कितना समय लेना चाहिए?
0: देखिए हीट स्ट्रोक तो बिल्कुल एकदम से आपको इफेक्ट करता है, इसमें आपको समय नहीं देगा कि 6-7 दिन से हो चल रहा है, इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो 7 डेज लगता है, या कोई और इन्फेक्शन है तो वो जैसे टीबी है तो उसमें और ज्यादा लो ग्रेड फीवर चलता रहता है। लेकिन हीट स्ट्रोक की जहां बात करेंगे उसमें एकदम से व्यक्ति जो होता है गफलियत में जाएगा, एक दिन के अंदर आपको, एक या दो दिन में आपको ये

0: सिम्टम्स आने लग जाएंगे और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा।
1: राइट, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो।
2: हेलो मैम, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम राजेश कुमार, जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, सवाल पूछें।
2: सवाल ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा जो
1: जी,
2: अगर हम बीमार हो जाते हैं जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग करने से सही रहेगा या
0: जी
2: डॉक्टर नींबू पानी पीने से?
0: देखिए, नींबू एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उसको आप ज्यादा सेवन ना करें। इससे बेटर है कि नॉन एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे लस्सी हो गया, शिकंजी हो गया, या और भी आप अपने घर में भी आप बना सकते हैं, नींबू पानी जैसा जो आप बता रहे हैं वो आप लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि आप टी कॉफी ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या ये एरिएटेड ड्रिंक जिसमें फिज होता है, ये सब अवॉइड करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि बाहर की जो चीजें होती हैं, चाहे वो पैकेज्ड आइटम्स हों या फिर ओपनली जो हमें मिल रही हैं, खासकर तरल पदार्थ या फिर कटे फल फ्रूट, उनका तो बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वाटर कॉन्टेमिनेशन से परेशानी होती है।
0: एग्जैक्टली, तो आप जितना हो सके पैकेट वाला लें ताकि वो कंटेमिनेशन ना हो। अभी क्या होता है कि हीट रिलेटेड, हीट के साथ साथ जो बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इस तरह की चीजें जो खुले में बिक रही होती हैं तो उससे लूज मोशंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और डायरिया, डिसेंट्री और साथ साथ में हेपेटाइटिस के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: एक कॉलर है लाइन पर। हेलो।
3: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जितेंद्र, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़, यूपी वेस्ट से।
1: जी जितेंद्र जी, स्वागत आपका रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछ सकते हैं आप।
3: हाँ मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जितेंद्र जी, बोलिए।
3: मेरे तीन सवाल हैं।
1: पहला सवाल
3: मेरा ये है, जैसे किसी व्यक्ति को लू लगती है
1: जी
3: या प्लेटलेट डाउन हो चुकी है, वो बोलते हैं कि रसगुल्ले खिलाओ या पिलाना चाहिए या नहीं चाहिए?
0: जी जी,
1: क्या बात है।
3: दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कीवी का फल बोलते हैं
1: जी,
3: या बकरी का दूध या पपीते के पत्ते, ऐसी लिक्विड पेशेंट को देना चाहिए? तीसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कितनी पीनी चाहिए, या कोल्ड ड्रिंक कॉफी या नहीं?
1: आप कार्यक्रम नहीं सुन रहे जितेंद्र जी, अभी पिछले कॉलर ने यही सवाल पूछा था जो आपका तीसरा सवाल है, फिर भी डॉक्टर साहब दोहरा देंगे आपके लिए, अब आप उनकी बात सुने।
0: हाँ सुनिए, देखिए अगर लू लग गई है और मरीज जो है आपके होश हवास में नहीं है तो आप उसको कतई कुछ भी मुंह से ना डालें, अगर क्योंकि वो पी नहीं पाएगा और आप हानि करेंगे ज्यादा लाभ करने से बजाय आप ज्यादा हानि करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर होश हवास में नहीं है, अगर तो वो होश में है और पी सकता है चीजें, तो उसको आप नींबू पानी और पानी दीजिए, पहले तो उसको शेड में ले जाएं, धूप से डायरेक्ट सनलाइट से दूर लेके जाएं और उसको तरल पदार्थ दीजिए। इस तरह की चीजें जैसे आपने बताया कि रसगुल्ला देना या एरिएटेड ड्रिंक्स है, ये सब अवॉइड करेंगे। आप नॉर्मल पानी दीजिए और ORS का ड्रिंक दे सकते हैं, आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं, आप शिकंजी दे सकते हैं या लस्सी भी दे सकते हैं उसमें, लेकिन नमक का थोड़ा सा मिला के, या जो आजकल वो कहते हैं कि नमक वाली लस्सी होती है जो छाछ कहते हैं, तो इससे क्या होगा कि उसको, क्योंकि देखिए आप स्वेटिंग में क्या होता है, जो पसीने निकलते हैं उसमें खूब सारा नमक आपका लॉस होता है, तो नमक का रेप्लेनिश करना यानी उसको पूर्ति करना वो बहुत जरूरी है। तो नमक आप जरूर उनको दे पानी के साथ साथ। और ज्यादातर लू में क्या होता है, अगर लू की बात करें तो वो होश हवास में नहीं होता, ऐसे कंडीशन में उनको कुछ भी मुंह से देना, क्योंकि वो सीधा लंग्स में जाएगा, आप वो उसको फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें ऐसे कंडीशन में उनको हम इंट्रावीनस यानी कि नसों के जरिए पानी चढ़ाते हैं, ऐसे में मुंह से उनको देना हानिकारक हो सकता है।
1: और ये बहुत ही नोट करने वाली बात है क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी को परेशानी हुई और हम उनके मुंह में कुछ ना कुछ मीठा या कोई और खाने का पदार्थ डालने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने रसगुल्लों की बात की
0: जी।
1: तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर संजय हमें यही बता रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और समस्या गर्मियों में बहुत देखी जाती है कि आंखों में बहुत जलन होती है, कई बार पानी आता है और आंखों में एक लालिमा सी छा जाती है, और ऐसा ही सवाल हमें पूछ रहे हैं कौलेश्वर ठाकुर, ग्राम बारियातू, जिला लातेहार, झारखंड से, तो इसके बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बिल्कुल, देखिए आंख जब लाल हो जाती है उसका कारण यही होता है कि जो गरम गरम हवा है वो आंखों पे लग रही है और आपके जो ड्राइनेस के वजह से आंखें लाल होती हैं। तो एक्सेसिव ड्राइनेस, क्योंकि जो धूप होती, जो ये जो गर्म हवा होती है ये काफी जल्दी आपके आंखों को सुखा देगी, तो इसके लिए जैसे कि जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं या बाइक चलाते हैं या पीछे भी बैठते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके कोई चश्मा पहन ले, गॉगल्स पहन ले बड़ा जो, या तो अगर आप के पास कोई भी चश्मा है तो उसको आप पहन लेने से आपको काफी राहत मिलेगी, और नहीं भी तो फिर आप अगर जैसे पीछे बैठे हैं तो आप बार बार

0: आप आंखों को ब्लिंक करते रहें, उससे क्या हुआ कि एक जो वाटर का जो वो एक लेयर जो होती है वो बार बार उस पर चढ़ती रहेगी, तो उस पर ड्राइनेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप आंखों को उसको ड्राई होने से और रेड होने से बचा सकते हैं। और नहीं तो बीच में अगर आप पीछे बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए आंख भी बंद कर सकते हैं, बशायदे कि आपको चक्कर ना आए और आप गिर ना जाए, आप आगे वाले को पकड़ के आप ऐसे भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं।
1: तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम जो भी परेशानियां बढ़ते गर्मियों के साथ हो रही है उससे निजात भी पा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब
0: जी,
1: अब यहां पर एक लिसनर है, राजू कुमार हैं आजमगढ़ पलहनी उत्तर प्रदेश से, कहते हैं कि गर्मियों में पैरों में बहुत जलन होती है और शरीर भी काफी गर्म हो जाता है जब ये सोते हैं तो अपने बिस्तर पर पानी डालकर सोते हैं, ये कितना सही है?
0: जी देखिए, ठंडा करने के लिए कई लोग बहुत अलग अलग तरीके का उपाय करते हैं, तो बिस्तर पे पानी डाल के सोना तो ठीक नहीं होगा
1: जी।
0: क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो ठंड लगने के चांसेस रहते हैं और लंग्स पे आपका सीधा असर रहेगा। आप इससे अच्छा तो कूलर अगर अफोर्ड कर सकते हैं कूलर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, या नीचे आप पानी अगर छोड़ सकते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन कि बिस्तर पे आप पानी छोड़ के सोए, और इससे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होता है। और जो पैरों में जलन की बात बताई उसमें तो देखिए आप ये देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई तो नहीं है, उसके लिए आप देखिए अगर आपको डायबिटीज है तो उससे भी जलन होता है, तो आप ये देखिए कि इनको डायबिटीज तो नहीं है, डायबिटीज की वजह से जलन तो नहीं हो रहा है, तो ये रीजन हो सकते हैं अन्य रीजन जो हीट के अलावा भी जिसको हमें देखना चाहिए।
1: श्रोताओं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री के साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत विस्तार से बहुत तसल्ली से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और ये जानकारियां हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो फिर कहां आप इधर उधर जा रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाएं रेडियो डॉक्टर के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और साथ ही बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए, और ये सफर यकीन मानिए साथ रहेंगे तो यूं ही हंसते खेलते जरूर कट जाएगा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: जी हाँ, बिल्कुल, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आकाशवाणी रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर। इसके प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट क्या होता है। और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत से मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। एक मैसेज आया है राजेश भल्ला जी का, ये एडवोकेट हैं, साथ ही ये कंकड़ खेरा मेरठ से हैं और कहते हैं कि गर्मियों में हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राहत जो मिलती है जब प्यास लगती है तो ठंडे पानी से ही मिलती है, और ये बात शत प्रतिशत सही है।
2: हाँ जी बिल्कुल, राहत जो मिलती है वो और पीने को अच्छा भी लगता है, प्यास भी बुझती है, तो वो ठंडे पानी से ही। जी बिल्कुल, तो ठंडा पानी पी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है जब आप बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर पीते हैं, तो उस तरह की चीजें नहीं करनी है कि बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर पीनी है। तो हम ठंडा पानी पिए, उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जरूर पी सकते हैं ठंडा पानी, है ना। अगर आपको ठंडे पानी से अगर गले में बार बार आपको एलर्जी है, या कुछ लोगों को होती है कि गला खराब हो जाता है, तो ऐसे में फिर आपको अवॉइड करना चाहिए ठंडा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना।
1: और कई बार टूथ सेंसिटिविटी की भी समस्या हो जाती है जब एकदम से।
2: जी, अगर कोई दिक्कत आ रही है ठंडा पानी पीने से तो आप उसको अवॉइड करें, फिर नॉर्मल टेम्परेचर का टप्पा।
1: राइट डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है रोहिणी से, इनका नाम है तवाब, और कहते हैं कि 27 साल के हैं, सिलाई मशीन चलाते हैं और गर्मियों में इनको पेट में गैस की बड़ी समस्या होती है।
2: जी देखिए, गर्मी में क्या होता है कि आप पानी कम पीते हैं, और पानी कम पीते हैं तो जो फूड होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं। और फिर आपको जैसे सिलाई मशीन पे बैठने का ज्यादा काम है, तो मेरे ख्याल से आप बीच बीच में एक घंटे में थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा वॉक कर लें, 5 मिनट का ब्रेक दे दें बीच में, तो ये आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। और साथ साथ में आप सैलड्स लें, ज्यादा फ्रूट्स लें, क्योंकि हम और तरल पदार्थ भी लें, तो ये सब चीजों से आपका थोड़ा पेट सही रहेगा और जो पेट की जो समस्या है उससे थोड़ी निजात पा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है, मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कहते हैं कि गर्मियों में सुस्ती बहुत होती है और नींद बहुत आती है, तो क्या इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है, या फिर हम क्योंकि दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं तो क्या इस वजह से ये होता है कि हम ज्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं?
2: जी देखिए, जहां गर्मी में तो देखिए वैसे ही आदमी थकान महसूस करता है, क्योंकि

0: पे बॉडी से सॉल्ट की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बीपी लो होने लग जाता है, तो इसके वजह से भी आदमी थकान महसूस करने लग जाता है। जो तो सॉल्ट का मात्रा आप जरूर लेते रहें अगर आप ज्यादा गर्मी में हैं, अदरवाइज तो गर्मी में अगर आप एसी में हैं तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब खास करके मोनोटोनस जो एक लाइफ होती है ना, जो मोनोटोनस एक ही काम कर करके आदमी थक भी जाता है, तो उससे भी एक साइकोलॉजिकल थकान जिसको कहते हैं, वैसे फिजिकली थकान नहीं है आपको लेकिन साइकोलॉजिकल थकान जो हो जाती है वो हो जाती है। उसमें आप अपने माइंड को बीच बीच में म्यूजिक सुन ले, जैसे आप एफएम रेनबो पे सुन रहे हैं अभी तो फिर आप अपने दिल को जरूर और मन को तरोताजा कर सकते हैं।
1: थोड़ा ये भी कारण रहता होगा कि गर्मियां हैं तो ज्यादा बाहर आना जाना भी कम हो जाता है,
0: exactly.
1: तो इसलिए भी हाँ, थोड़े सा आलस महसूस करते होंगे। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो।
2: हेलो, मेरा नाम गोपाल सिंह।
1: गोपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं
2: हम? मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं जी।
1: मुजफ्फरनगर से जी, सवाल पूछे
2: जी। हमारा सवाल ये है, हमारे जो है मतलब जो है वो है बासीर, तो इस बासीर के बारे में मतलब हमने इलाज भी बहुत कर लिया लेकिन ये बासीर ठीक नहीं हो पा रही, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा
1: जी? डॉक्टर साहब की बात सुनिए।
0: हाँ जी, देखिए बवासीर खास करके जो खूनी वाली बवासीर होता है उसमें खूनी वाली है ना आपके पास, तो इसमें तो आप पहले तो मेडिकल थेरेपी होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, वो आप डॉक्टर से मिलके ले सकते हैं। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, फिर आपको इसमें सर्जरी करानी पड़ती है, तो वो सर्जरी से आपको हमेशा के लिए निजात आप इससे पा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी होता है, आप अगर आप अपना तरल पदार्थ ज्यादा लें और सैलड्स ज्यादा लें तो भी इससे आपको जो लूज जो टॉयलेट अगर जो लैटरिंग का है आपका वो टाइट ना हो ज्यादा, उसके लिए आप थोड़ा से अगर सैलड्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे और वेजिटेबल्स लेंगे तो उससे काफी हद तक ये जो स्टूल्स हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये आपको दिक्कत थोड़ा सा कम करेंगे और उसमें हीलिंग में उसको समय मिल जाएगा, तो इस तरह से आप उससे निजात पा सकते हैं। आप एक सर्जन से जरूर मिलते रहें बीच बीच में जाके, बहुत छोटा सा तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन ठीक ठाक सर्जरी होती है इसकी, और सर्जरी के बाद इसमें टोटल आपको निजात पा सकते हैं इससे, तो एकमात्र इसका इलाज जो है वो सर्जरी ही होता है फाइनली।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए भोपाल जी। साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ने वाले थे लेकिन फिलहाल नहीं है, बहरहाल मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मैसेजेस की यहाँ पर झड़ी लगी हुई है डॉक्टर साहब। अशोक कुमार है मोहम्मदाबाद गाजीपुर से, कहते हैं कि जब नहाने के साथ साथ ना इनको हाथों में बड़ी खुजली होने लगती है और कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है, साथ ही ठंडा भी इनको लगता है, तो ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं
0: जी। देखिए हाथों में अगर खुजली हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कोई डिटर्जेंट या कोई सोप से आपको वो है एलर्जी है, क्योंकि ये नहाने के बाद हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डिटर्जेंट या सोप या इसको चेंज करके या डिफरेंट या उसको लेके आप इमोलियंट्स आप लगाइए इसमें, जो इमोलियंट्स होते हैं क्रीम्स होते हैं उससे अगर ठीक हो जाता है, अदरवाइज फिर आप अपने डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलके उसका इलाज कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब शुभम शुक्ला जी हैं नई दिल्ली से, कहते हैं कि जब भी ये नहाते हैं तो इनकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ब्लड रेड हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही अगर ये सिर्फ 5 मिनट के लिए भी नहा रहे हैं तो ये समस्या इनको हो जाती है, और ये किसी तरह का फेस वॉश या सोप का इस्तेमाल अपने चेहरे पर नहीं करते हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है, आपसे मदद चाहते हैं।
0: हाँ जी, देखिए इसमें क्या होता है, पानी का आपको देखना पड़ेगा कि हार्डनेस तो कहीं ज्यादा नहीं है, टीडीएस अगर बहुत ज्यादा है उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है ना। कई बार क्या होता है जो नॉर्मली हम लोग जैसे 150, 200, 250, 300 तक भी उसको ले लेते हैं टीडीएस जो होता है, लेकिन कई जगह पे जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 1000 के आसपास है या उससे भी ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जब सॉल्ट की कंटेंट पानी में ज्यादा होता है जिसको हम कहते हैं कि हार्ड वाटर है ना, तो ऐसे हार्ड वाटर जो होता है उसमें फिर आंखों में जलन स्वाभाविक है, ऐसे में फिर आपको एक बार अपना टीडीएस लेवल चेक कराना चाहिए उसका।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक कॉलर है लाइन पर, ये हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास कॉलर्स की कमी या बिल्कुल नहीं है, अगले कॉलर के पास चल रहे।
3: हेलो,
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: नमस्कार रघुविंदर जी।
3: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: जी नमस्कार, सादर प्रणाम।
3: डॉक्टर साहब इन दिनों मुझे एक दिक्कत हो रही है, वो ये कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरे मुंह बिल्कुल सूखा होता है, बोलने में भी दिक्कत आ जाती है।

0: लेकिन एक दो मिनट या पांच मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है, क्या कारण हो सकता है कृपया बताने का कष्ट
1: जी। देखिए इसमें एक तो कारण यही हो सकता है कि आप अगर रात को मुंह खोल के सोते हैं तो और मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से बार बार सांस लेने से जो मुंह है टंग है ये पूरा ड्राई हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिंस आप ले रहे हो जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिंस होती हैं या और भी अन्य मेडिसिंस होती हैं जिससे कि आपका यूरिन की मात्रा ज्यादा बनती है, जैसे हाइपरटेंशन की या फिर कोई और बीमारी की जो दवाइयां होती हैं तो डायुरेटिक जिसको कहते हैं वो उस दवा लेने से भी क्या होता है कि आपको आपके जो बॉडी के जो सॉल्ट कंटेंट है और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से भी ये इस तरह से आपको सिम्टम्स आ सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब
1: जी,
0: ये बीपी और शुगर की दवाई जो मैं लेता हूँ ये खाना खाने के पहले ले ली जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है?
1: हाँ देखिए वो मैंने जैसे बताया ना, अगर आप बीपी शुगर की दवा ले रहे हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार आप देखिए कुछ दवाइयां होती हैं जो खाने से पहले लेनी होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं खाने के बाद लेनी होती हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलके आप अच्छी तरह समझ लें कौन सी मेडिसिन कब लेनी है तो उससे ये जरूर समस्या, और इसका भी आपको वो बता देंगे। इसमें क्या करना है आपको कि थोड़ा सा पानी पीते रहें, रात में पानी का गिलास अपने पास ही रखें, है ना, तो इस तरह से आपको इससे निजात मिल सकता है, और एक करवट लेके सोएंगे तो उससे भी अच्छा रहेगा। आप
2: अगले मैसेज की ओर आगे बढ़े डॉक्टर साहब। रोहित खेड़ा जी हैं दिल्ली 9 से, बहुत सी शायरी करते हैं, कविताओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लू उन लोगों को लगती है जो अंदर से कमजोर होते हैं, और अगर ऐसा है तो हम ऐसा क्या करें अपने शरीर के साथ में जिससे हमें लू जैसी समस्या हो ही ना।
1: हाँ जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि अंदर से कमजोर का मतलब मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं
2: जी।
1: जैसे कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आपको किडनी की बीमारियां हैं, लिवर की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है और आपका कहीं ना कहीं वैसे ही रिजर्व कम है और आप कुछ मेडिकेशंस ऐसे ले रहे हैं, हार्ट की मेडिसिन ऐसी होती हैं, लिवर की भी होती हैं, लंग्स की जो होती है मेडिसिन जिसको आपको ना वो डिहाइड्रेट करते हैं डॉक्टर्स, तो ऐसे में आप पहले से ही डिहाइड्रेटेड हैं और ऊपर से फिर आपको लू लग जाए तो ये दोहरा अटैक हो जाता है आपके ऊपर, और इसमें फिर आपकी बड़ी जल्दी ही सामान्य से कम समय में ही आप लू आपको लग जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है, तो इसमें आपको पानी पीते रहें और नमक की जो ज्यादा लेना है उसमें ये भी दिक्कत रहता है कि आपको बोला जाता है कि नमक का परहेज करना है आपको, साथ साथ में पानी का भी परहेज करना है, तो ऐसे कंडीशन में जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है तो ऐसे, या किडनी की भी प्रॉब्लम है तो उनको ये ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा भी जैसे जो बहुत ओल्ड है या बहुत यंग बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या जो लोग बाहर काम करने के लिए विवश हैं, वेंडर्स हैं जो ठेले लगाते हैं या जो डेली वेज वर्कर हैं उनको तो काम करना ही पड़ेगा, या फिर पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस में है उनको बाहर काम करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए तो यही रहेगा कि जो 12 और 2 बजे के बीच का जो समय है, जो सबसे ज्यादा धूप का समय होता है, उसमें आप शेड में रहें और पानी बीच बीच में लेते रहें, नमक का सेवन भी करते रहें और ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट ना करें इन ये 2-3 घंटे के बीच में, तो आप इनसे बच सकते हैं।
2: सर जैसे आपने कहा 12 से 2 का समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो सन के एक्सपोजर में है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए छाया में नहीं रह सकते तो क्या जैसे कैप लगा लिया या सर को ढक लिया इस तरीके से फायदेमंद?
1: इसमें आपको देखिए प्रॉपर क्लोदिंग भी बहुत जरूरी है, जैसे आपने बताया कि आप कैप की जगह हैट ले लें, जो हैट काफी बड़ा होता है तो हैट ले लें, और साथ में आप अगर सनस्क्रीन का अफोर्ड कर सकते हैं तो सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, और साथ में पानी पीते रहें, और कपड़े आपके प्रॉपर होने चाहिए, लूज फिटिंग होने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े नहीं होने चाहिए जिससे कि आपका जो स्वेटिंग है वो इवेपोरेट नहीं होता है, तो उसके लिए कॉटन कपड़े पहने और ब्राइट कलर्स वाले कपड़े पहने, सफेद कपड़े, डार्क कपड़े पहनने से फिर आपका वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो डार्क जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं, तो लाइट रंग के कपड़े पहने, उससे हीट रिफ्लेक्ट होता है, और जैसे मैंने बताया कि पानी का सेवन करते रहें और नमक की पूर्ति भी आप लेते रहे नमक।
2: श्रोताओं डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छी जानकारी हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूं मैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी बातें यहां पर हो रही हैं गर्मियों से बचने के लिए और हीट रिलेटेड जो इलनेसेस हो जाती हैं, जो तकलीफें समस्याएं हमें हो जाती हैं, उनके बारे में आप जानकारी नोट कर रहे हैं और जो जो सजेशन डॉक्टर साहब दे रहे हैं आप उन्हें अच्छे से फॉलो भी करेंगे।

0: ये कार्यक्रम जारी रहेगा, बस कुछ ही देर में लौटती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
0: श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रेडियो डॉक्टर में, आकाशवाणी रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मेरा नाम है नेहा और आज बातें हो रही हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में डॉक्टर संजय कुमार के साथ। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास बहुत देर से आया हुआ है, इनका नाम ढूंढने का प्रयास कर रही हूं, मिलेगा तो बताऊंगी। कहती है कि बच्चों को हम लू से कैसे बचा सकते हैं, और क्योंकि इनका जो बेटा है वो शाम के स्कूल में जाता है, यानी कि दोपहर वाला जो स्कूल होता है जो शाम को खत्म होता है, तो दोपहर में धूप तो रहती है तो बच्चे के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो जानना चाहती हैं।
2: जी देखिए, जो मैंने बताया कि ज्यादातर हो सके तो आप शेड में रहें, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है जैसे आपके केस में, तो आप छाता लेके, जैसे अभी बताया हमने, कैप या हैट इस तरह की, या सनस्क्रीन लगा के और बच्चे को हाइड्रेट करके आप ले जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मतलब छाते में रहेंगे तो भी आप डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहेंगे। और इतना, और खास करके बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं, वो सब ना करें। एक्सरसाइज करने से भी आपका इंटरनल हीट जनरेशन होता है, तो बच्चों को ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। धूप में ज्यादा खेले नहीं, कूदे नहीं, साइकिलिंग ना करें, इस तरह की चीजें करने से और ज्यादा वो दिक्कतें आ सकती हैं, और आपका स्वेटिंग ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, सॉल्ट लॉस होगा, तो इस तरह की चीजें ना करते हुए आप बच्चे को सुरक्षित आप वहां पे अपने स्कूल तक ले जा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये मैसेज था गौरव जी का, ये हमें मैसेज कर रहे हैं सीतापुरी से, तो इन्होंने ये सवाल पूछा था। अब जैसे कि आपने बच्चों के बारे में तो बात की कि उन्हें एक्सरसाइज वगैरह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में जो फिटनेस एंथुजियास्ट हमारे होते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या गर्मी में उन्हें एक्सरसाइज या हैवी इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कितनी करनी चाहिए?
2: जी, एथलीट्स जो होते हैं या जो प्रोफेशनल वो है, उनके लिए तो खास करके उनको तो करना ही है, तो वो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, आजकल जो लाइट है आप देखेंगे कि 5 बजे हो जाता है, तो आप 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, सबसे ठंडा जो समय होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, तो आप सुबह सुबह का आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर शाम को आप यू नो शाम को जब धूप चले जाती है उसके बाद भी आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए, कि जैसे कि ओवर एक्सर्ट नहीं करना है आपको, और तरल पदार्थ का सेवन करते रहना है, सॉल्ट की मात्रा पूरी लेनी है, और कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत उसका आपको दिखाना है डॉक्टर्स को।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने सॉल्ट के बारे में बात की तो मुझे याद आया एक मैसेज हमारे पास आया था, हालांकि वो मैसेज कहीं खो गया है बाकी मैसेजेस में, लेकिन उसमें ये पूछना चाह रहे थे कि अगर हम गर्मियों में सॉल्ट खाते रहेंगे तो क्या उससे हमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाएगा?
2: जी जी, बिल्कुल सही है, अगर आप ज्यादा लेंगे तो जरूर होगा, लेकिन आप देखिए नियमित तौर से आपको लेना है, स्पेशली जो लोग ज्यादा बाहर जाते हैं, जिनको स्वेटिंग ज्यादा होता है उनको ज्यादा लेने की जरूरत है, अदरवाइज अगर आपको स्वेटिंग नहीं है, ज्यादा नहीं है, घर में ही आपको रहना है, उसके हिसाब से आपको सबको लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, हार्ट की बीमारी है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर COPD है, जैसे उसमें हम बल्कि पेशेंट को हम डिहाइड्रेट करते हैं, उनका जो बाद भी आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए, कि जैसे कि ओवर एक्सर्ट नहीं करना है आपको, और तरल पदार्थ का सेवन करते रहना है, सॉल्ट की मात्रा पूरी लेनी है, और कभी भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत उसका आपको दिखाना है डॉक्टर्स को।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने सॉल्ट के बारे में बात की तो मुझे याद आया एक मैसेज हमारे पास आया था, हालांकि वो मैसेज कहीं खो गया है बाकी मैसेजेस में, लेकिन उसमें ये पूछना चाह रहे थे कि अगर हम गर्मियों में सॉल्ट खाते रहेंगे तो क्या उससे हमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाएगा?
2: जी जी, बिल्कुल सही है, अगर आप ज्यादा लेंगे तो जरूर होगा, लेकिन आप देखिए नियमित तौर से आपको लेना है, स्पेशली जो लोग ज्यादा बाहर जाते हैं, जिनको स्वेटिंग ज्यादा होता है उनको ज्यादा लेने की जरूरत है, अदरवाइज अगर आपको स्वेटिंग नहीं है, ज्यादा नहीं है, घर में ही आपको रहना है, उसके हिसाब से आपको सबको लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, हार्ट की बीमारी है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर COPD है, जैसे उसमें हम बल्कि पेशेंट को हम डिहाइड्रेट करते हैं, उनका जो

ये गीत है, फिल्म का नाम है तमाशा। इस गाने का आनंद लेते लेते अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है कार्यक्रम में, आप चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं। चाहें कि आपको करना ही चाहिए, हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में बातें हो रही हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: बेशक हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे और रेडियो डॉक्टर के माध्यम से तो हम इस बात की हमेशा पुष्टि करते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपकी सेहत का ख्याल रखने का जिम्मा हमने तो उठा लिया है आकाशवाणी रेनबो पर। और आज मैं हूं आपके साथ नेहा, साथ है मेरे डॉक्टर संजय कुमार, बहुत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो विस्तार से जानकारी दी है उसके लिए थैंक यू आपकी ओर आया है। मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं, आपको कहते हैं कि इतनी उम्दा जानकारी और गर्मियों के बारे में जो जानकारी आप दे रहे हैं, बड़े सुखचैन से हम आराम से रह सके ये कह रहे हैं आपके लिए।
1: धन्यवाद मनोहर लाल जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और इसके साथ साथ एक कॉलर अब बड़ी देर से लाइन पर है, इनको मैं लेना चाहूंगी लाइन। हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: अनूप बोल रहे हैं झारखंड से।
0: अनूप जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछें सवाल।
2: ये पानी जी वाटर इंटेक के बारे में बताएं, कितना पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन ना हो।
0: अच्छा अच्छा,
2: हाइड्रेटेड रहे।
0: जी जी डॉक्टर साहब सुने आपने।
1: जी देखिए, इसमें जो सबके लिए अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हैं या धूप में ही काम करते हैं उनको 8-10 गिलास से भी ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो लोग घर में हैं और एसी कमरों में रहते हैं उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग हिसाब से आपको जरूरत होती है। तो थर्स्ट जो होता है, जो थर्स्ट मैकेनिज्म होता है, यानी जो प्यास लगने की जो प्रक्रिया है, अगर आपको प्यास लग रही है आपको बहुत ज्यादा, तो आपको डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा है। तो इसमें आप जहां आप एक गिलास पीते हैं वहां दो गिलास पीना चाहिए, और कहा गया है कि कम से कम 8 गिलास तो पानी गर्मी में पीना ही सभी आदमी को 8 आवर्स। लेकिन फिर अब उसमें ये हो जाता है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको वैसे ही सूजन पूरे बॉडी में है और वो धूप में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको सॉल्ट और वाटर रिस्ट्रिक्शन के लिए बोला गया है। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये लोग थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, क्योंकि ज्यादा वाटर लोड करने से उनके हार्ट पे जोर पड़ेगा, उनका हार्ट वैसे ही वीक है, तो ऐसे कंडीशन में उनको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अब हमारा कार्यक्रम बिल्कुल समेटने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है, तो ऐसे में चलते चलते हमारे लिसनर्स को आप इन गर्मियों में अपने आप को बिल्कुल तरोताजा रखने के लिए और फिट रहने के लिए क्या टिप्स एंड सजेशंस देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: देखिए, हमें क्या करना चाहिए ये तो हम बहुत बोल चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या नहीं करना चाहिए वो है, हमें ज्यादा चाय और कॉफी और इस एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली डार्क क्लोथ्स जो होते हैं, एक्सरसाइज हमें धूप में नहीं करना चाहिए, जो ज्यादातर हम काम 12 बजे से पहले कर लें या 2-3 बजे के बाद करें तो हमें धूप से बचे रहेंगे। और जब भी हमें कोई ऐसा सिम्टम्स लगे जैसे हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, गफलियत होने लग जाए, स्वेटिंग और इस तरह से जो चक्कर आना या हेडेक होने लग जाए, तो ये सब चीजें इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसमें हमें तुरंत डॉक्टर से मिलके इसको इलाज कराना चाहिए।
0: यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि अब अगर हमारे घर मेहमान आए इन गर्मियों में तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर करने की बजाय घर का

0: बना ठंडा नींबू पानी देना चाहिए ताकि उनके सेहत में कभी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू नेहा, थैंक यू।
0: सो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो डॉक्टर, हीट रिलेटेड इलनेसेस विषय पर हमने बात की। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर संजय कुमार द्वारा दी गई जानकारी का आप भरपूर फायदा उठाएंगे और इस बात की पुष्टि आप ऑलरेडी कर रहे हैं मैसेजेस में। रोहित जी का भी मैसेज आ गया है कि अब तो लू नहीं लगेगी क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारियां जो हमारे साथ साझा कर दी है। बस आपके इसी तरह के जो प्यार भरे हौसला अफजाई करने वाले मैसेजेस होते हैं ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है और खून तो मेरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसा ही आप भी करें, अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते हमेशा रहिएगा। और साथ ही रेडियो डॉक्टर के बारे में अगर आपके कोई विचार हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका फीडबैक सर आंखों पर healthairdelhi@gmail.com पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये है इस कार्यक्रम का अंत और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों का विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो चुका है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वियतनाम की राष्ट्रपति तो लाम की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और अटूट मित्रता को दर्शाती है। श्री पुरी ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का परिचायक है। श्री लाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केरलम यूडीएफ गठबंधन सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह 2 के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एआई वाले स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। इससे वो ध्वनि के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे। प्रत्येक चश्मे की कीमत लगभग 35,000 रूपये है। इन्हें निःशुल्क प्रदान किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर और निफ्टी 298 अंक बढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम

मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है कहानी हर लड़की की। और ये टाइटल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हर लड़की की कहानी में एक पन्ना ऐसा जरूर होता है जब ऐसा लगता है कि अब आगे क्या। लेकिन उसी पन्ने के बाद उसकी कहानी लेती है एक खूबसूरत मोड़।

दोस्तों 17 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था रिया। वो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को बार बार निहार रही थी जिसमें उसको मिले थे मात्र 55%। इतने कम अंक आने की वजह से घर में सब उससे नाराज थे और घर वालों के ताने सुन सुनकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। रिया सोच रही थी, अब क्या करूं? एक तरफ घर वाले नाराज थे और दूसरी तरफ उसकी सहेलियां उससे आगे निकल रही थी। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी फेवरेट संजीता मैम का फोन आ गया। बातों ही बातों में संजीता मैम ने रिया को समझाया कि ये मार्कशीट तुम्हारी पूरी रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तुम ड्राइंग कितनी अच्छी करती हो वो भी तो देखो। बस यही बात रिया के दिल को छू गई। उसने हार नहीं मानी और 12वीं में आर्ट्स लेकर खूब मेहनत की और आज रिया निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग कर रही है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर उस दिन रिया 55% वाले दिन रुक जाती तो ये वाला दिन कभी नहीं आता। दोस्तों कम अंक आना, घर वालों की डांट, ब्रेकअप, ये सब जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ कॉमा है क्योंकि कहानी अभी बाकी है। दोस्तों आपकी क्लास में भी कोई रिया होगी और शायद आप खुद रिया हो, तो आज आप अपने से वादा कीजिए कि एक बुरा दिन बुरी जिंदगी नहीं होता। और हाँ, आप किसी की बेटी और बहन बनने से पहले इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप खुद अपनी

जी हाँ, अगर ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, तो जिंदगी में हम कभी भी निराश नहीं होंगे। जिंदगी को खत्म करने की कभी

0: दोस्तों आज दिशा प्रोग्राम में आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से और जानते हैं कि क्यों लड़कियां और महिलाएं जल्दी जिंदगी में हार मान लेती हैं। विनीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि छोटी सी छोटी परेशानियां आने से लड़कियां या महिलाएं विचलित होने लगती हैं और जिंदगी को ही खत्म करने के विचार उनके मन में आने लगते हैं,
1: क्योंकि वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, शारीरिक रीति से कमजोर रहती हैं, मानसिक रीति से कमजोर रहती हैं। और एक स्त्री के, एक लड़की के जिंदगी में चार ऐसे पड़ाव आते हैं जब वो डिप्रेशन की प्रति काफी ज्यादा वो वल्नरेबल हो जाती है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो गया। तो यही कारण है कि अधिकतर देखा जाता है कि लड़कियां ज्यादा जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हैं, और विशेषकर हमारे देश में तो बहुत जल्दी, जहां पर उनको बचपन से ही, जन्म से ही बोझ समझा जाता है और उनको बोला जाता है कि लड़की पैदा हुई है और लड़का क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके की हीन भावना जब लड़की उसके साथ बड़ी होती है तो कोई भी तूफान उसकी जिंदगी में आता है, कोई भी बात होती है बहुत नेगेटिव की तरफ, नकारात्मक की तरफ, तो वो बहुत जल्दी प्रोन होती है टुवर्ड्स डिप्रेशन।
0: मतलब एग्जाम में रिया की तरह कम मार्क्स आते हैं, या मम्मी पापा ने घर में जोरदार डांट लगा दी, या प्यार में धोखा मिल गया।
1: हाँ बिल्कुल, और बहुत इनका दिल जो होता है अधिकतर लड़कियों का, आपको पता है, बहुत कोमल रहता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, रोती भी जल्दी है, डिप्रेशन भी जल्दी होता है, मूड स्विंग भी जल्दी होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी आप रीजन बता रहे हैं वो

0: अच्छा विनीता जी, एक बात बताइए, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, क्या जिंदगी को समाप्त करके हालात बदल जाते हैं?
1: नहीं, हालात तो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं, बल्कि मैं सोचती हूँ कि जो आत्महत्या करता है वो अपने पीछे छूटे हुए परिवार के हालातों को और भी

0: ज्यादा खराब करके छोड़ देता है। और मैं नहीं सोचती कि आत्महत्या हमारी परेशानियों का सोल्यूशन है। आप दुनिया में देखिए, आप किसी की भी तरफ नजर उठा के देखिए, आप किसी को भी नहीं पाएंगे कि जो ऐसा कह सके कि वो परेशानियों से मुक्त है। सबके पास परेशानियां हैं। आप सोचते हैं अमीर लोगों के पास परेशानियां नहीं है, ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अमीर लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा उनके मैरिजेस ब्रेक डाउन होते हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। तो सबको परेशानियां हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हमारी ही परेशानी है और हमसे ज्यादा परेशान कोई इस दुनिया में है ही नहीं, तो ये हम गलत सोचते हैं।
1: विनीता जी, जब सबको ये पता है कि जिंदगी खत्म करने से समाधान नहीं निकलता, तो ऐसा कदम उठाते क्यों हैं?
0: बिल्कुल, मैं समझती हूँ। मैं इस कार्यक्रम के द्वारा श्रोताओं को यही बताना चाहती हूँ कि जो सुसाइड होता है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। वो हमारी परेशानियों का इलाज नहीं है। सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का, उदासीनता का सामना करना पड़ता है। हम बहुत कठोर परिस्थितियों में जीवन में रहते हैं और सबकी जिंदगियों में तूफान आते हैं। लेकिन हमको इस बात को याद रखना है कि पहली चीज, तूफान हमेशा नहीं आते। तूफान आते हैं और चले जाते हैं। और हमको ईश्वर ने एक ऐसी क्षमता दे रखी है, और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर एक इमोशनल कोशंट है जिससे कि हम उस मुसीबत से अपने आप को उभार सकते हैं। तो आत्महत्या के बारे में ना सोचते हुए हम अगर अपनी लाइफ को पॉजिटिवली सोचें कि हमारे पास उतना कितना है जो कि बहुतों के पास नहीं है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एक सकारात्मक एटीट्यूड रखें, और अगर ज्यादा ही दुख तकलीफ है तो किसी से बात करें, क्योंकि बात करने से भी हमारे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। उसको बोलते हैं वेंटिंग आउट। अगर हमने अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करी, दुख को शेयर किया, तो वो हल्का हो जाता है। और फिर हमें आप फोन करें। आपको पता है हमारे कार्यक्रम में हमारे काउंसलर्स हैं जो फोन रिसीव करते हैं, उनसे बात करें, और बात करने से बहुत कुछ समस्याओं का उपचार मिलकर निकल सकता है। लेकिन आत्महत्या, वो तो बिल्कुल भी सही सोल्यूशन नहीं।
2: अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना?
3: रोज रोज की वही चिक चिक। मैं तो परेशान हो गई।
2: तो बात करो और बैठकर मामला सुलझाओ।
3: कुछ नहीं होगा।
2: किसने कहा कुछ नहीं होगा?
3: मुझे मालूम है।
2: अच्छा एक बात बता, क्या तूने इस विषय पर बात की?
3: नहीं।
2: देखा, हम लड़कियों में यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। बात करेंगी नहीं और पता नहीं क्या क्या सोच लेंगी। अरे बात करने से तो हर बड़ी से बड़ी समस्या का हल मिल जाता है।
3: तो ठीक कह रही है।
2: अच्छा ज्यादा मत सोच, क्योंकि ज्यादा सोचने से नकारात्मक विचार ज्यादा मन में आते हैं। दिल की है ना, हर बात कहना सीखो।
1: जी हाँ, अगर कभी आपका मन भारी लगे तो चुप मत रहिएगा। मम्मी पापा, दीदी, टीचर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप इस संसार के लिए बहुत जरूरी

दोस्तों अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर को फोन या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ 7678438471। तो बिना संकोच के कीजिए बात और

0: चाहिए समाधान। और हाँ, अगर आप दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम 4 से 5 बजे के बीच जो एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होता है रेनबो का, वो प्रोग्राम नाम है उसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। और वेंसडे का ये स्पेशल प्रोग्राम हर बुधवार की शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपके लिए लेकर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को, वहां के स्टूडेंट्स को, उनके टैलेंट को और वहां के गलियारों की महक को। जी, कैंपस की महक जो है ना भूले नहीं भुलाई जाती है। देखिए ना, मैं बोल रही हूं ना, साथ साथ मुझे भी अपने कॉलेज के दिन जो है वो लगातार याद आ रहे हैं। ऐसा ही होता है, नॉस्टैल्जिया तो फील होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो कॉलेज है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि आपके कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है। और अगर आप कॉलेज से बाहर आ चुके हैं देन ऑब्वियसली आप जानना चाहते हैं कि कॉलेज में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो होती है ना वो एक ऐसा हिस्सा होता है जिंदगी का जिसे हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। एंड ऑब्वियसली जो सब चीजें हम वहां पर सीखते हैं, जो दोस्त हम वहां पर बनाते हैं, जो लेसन सीखे जाते हैं, वो भी सारी जिंदगी साथ साथ चलते हैं। तो जी, अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ। और आज हम जा रहे हैं हमारी सहयोगी माला नेगी के साथ राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज। और रामजस कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 फाउंडिंग कॉलेजेस में से एक है, वहां पर जब हमारी सहयोगी माला नेगी जो है पहुंची तो वहां पे उन्हें मिला टैलेंट का बहुत सारा खजाना। ऑब्वियसली सारा का सारा हम यहां तक ट्रांसपोर्ट जो है ना आप तक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कुछ चीजें चुनकर हम आपके लिए लेकर आए हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। ये बहुत ही आज का बेहतरीन, मुझे कहना चाहिए कि इट्स गोना बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और माला को तो हुआ ही, उसके साथ साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं रामजस कॉलेज की वाइब्स को। आप सुनते रहिए, हमारा ये प्रोग्राम नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और करते हैं बातचीत वहां के स्टूडेंट से।
2: हाय, तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में और मेरे साथ हैं यहाँ की नवरस सोसाइटी के मेंबर्स, जो कि यहाँ की डांस सोसाइटी है। बेहद ही उम्दा कलाकार हैं और आकाशवाणी भी हमेशा से उम्दा कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता आया है जिसके जरिए उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया। जानना चाहेंगे कि 90 साल पुराना हमारा इतिहास है, इस साल हमें 90 साल हो रहे हैं आकाशवाणी को। आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे, आकाशवाणी उससे भी पहले का है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में आकाशवाणी की एंट्री कब और कैसे हुई वो जानना चाहेंगे।
3: मेरा नाम विष्णु प्रिया है, मैं नवरस सोसाइटी से हूँ, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स रामजस। तो हमारे लाइफ में आई थिंक कि जब कार में ये फीचर नहीं हुआ करता था कि ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं फोन लैपटॉप वगैरह, तब लोग हमेशा FM ही चलाते थे, रेडियो ही चलाते थे गाना सुनने के लिए लॉन्ग जर्नीज में जब जाते थे तब। तो वैसे मैं कार में ही रेडियो को सुनी हूँ।
4: जी, मेरा नाम श्रेया वर्मा है और मैं रामजस कॉलेज की 1st ईयर की स्टूडेंट हूँ और नवरस सोसाइटी के मेंबर हूँ। और मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन रहा था कि मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से रेडियो के बारे में पता चला। जब छोटे थे हम और ट्रिप्स पे जाते थे तो गाने सुनते थे पुराने, और फिर मम्मा को भी लाइक कथक में इंटरेस्ट था, तो उस वजह से मुझे भी गाने में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और सारा ये कल्चर इन सब के बारे में पता चला। तो ऐसे ही मेरा भी इंटरेस्ट आया टू लर्न कथक एंड नो मोर अबाउट इट। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सुनते थे, मम्मा लोग सुनते थे और मम्मा को इंटरेस्ट था थोड़ा।
5: नमस्कार, हमारा नाम आदर्श विके है और हम रामजस कॉलेज के 3rd ईयर BSc जूलॉजी ऑनर्स के छात्र हैं। और हमारी जिंदगी में आकाशवाणी की जो एंट्री हुई वो एक्चुअली जब हमने स्कूलिंग

0: चालू की थी तब हो गई थी। सुबह सुबह हमारे यहाँ रामचरितमानस सुनने का बहुत ही मतलब चलन है।
1: अच्छा
0: जी, और उसी के साथ साथ शाम को जो आपकी फरमाइश हो रही थी। हाँ। सो ये सब को जो सुनने का चलन है धीरे धीरे हमारी जिंदगी में और गहरा होते रहा और अभी भी है।
1: सो
0: ऐसी हमारी एंट्री हुई आकाश पर।
2: जी, मेरा नाम अक्षत रस्तोगी है और मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए आकाशवाणी की एंट्री थ्रू रेडियो हुई थी। जब मैं मेरे पास एक पहले कीपैड वाले फोन आते थे तो उसमें ज्यादा फीचर्स भी नहीं होते थे, कोई भी तरह के SD कार्ड भी नहीं हुआ करते थे तब बैक दिन। तो मैं शाम को निकल जाया करता था छत पे ऐसे ही रेडियो सुनने, और मुझे याद है कि अमूमन ज्यादातर रेडियो स्टेशन पे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट आते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं आकाशवाणी को सुनता था क्योंकि सिर्फ गाने और संगीत के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और अभी जो मेरा इंटरेस्ट है शायद म्यूजिक में, उसका एक बहुत बड़ा कारण आकाशवाणी है। मुझे पहली बार राग के बारे में पता चला था तो आकाशवाणी के थ्रू। एक भजन था प्यारो नंदलाल जो राग नंद पर आधारित है।
1: हाँ।
2: तो मेरा जो अभी अभी जो भी इंटरेस्ट है आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल है, जो संगीत में हो चाहे रागों में हो राग विज्ञान में हो, वो थ्रू आकाशवाणी।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और हमें भी बहुत खुशी है कि हम अपने 90 साल के इस सेलिब्रेशन में आज रामजस कॉलेज को इंक्लूड करते हुए इस सेलिब्रेशन को और ज्यादा बड़ा और ग्रैंड बना रहे। थैंक यू सो मच इस बेहतरीन इंटरेक्शन के लिए।

ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಕೇಳತ ನಂದ.

0: बहुत ही सोलफुल परफॉर्मेंस रामजस कॉलेज में आज के दिन आना, सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दिन ऐसा फलीभूत हुआ है कि अभी और एक हफ्ता जो है आपका ये म्यूजिक मेरे माइंड में घूमेगा, घूमता रहेगा और मुझे ऐसी सोलफुल जर्नी की तरफ लेकर जाएगा जिसमें मुझे बहुत मजा आएगा। अब आप सभी लोगों का इंट्रोडक्शन लेते हैं और आपकी इस कल्चरल सोसाइटी के बारे में जानते
1: हैं। मनस्वी, फर्स्ट ईयर हूँ इको ऑनर्स के और म्यूजिक सोसाइटी का नाम है बैकबीट।
2: मेरा नाम अमन है और मेरी सोसाइटी का नाम बैकबीट है।
3: मेरा नाम कौशिकी है और मैं फर्स्ट ईयर की पॉल साइंस ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ।
4: मेरा नाम अनश्रुता है और मैं भी पॉल साइंस की स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर।
5: मेरा नाम अद्वैत है।
6: हाय, मेरा नाम अक्षत रस्तोगी है और मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ फिजिक्स।
7: नमस्ते, मेरा नाम भूमिका सिन्हा है, मैं सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट हूँ।
8: हेलो, मेरा नाम विष्णु प्रिया है और मैं बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
9: वाकई में इन परफॉर्मेंसेस की जो छाप है ना, वो काफी दिनों तक जो है हमारे दिल और दिमाग पर रहेगी। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां के स्टूडेंट से की उन्होंने मुलाकात। आप सुन रहे हैं हमारा ये बहुत ही खास प्रोग्राम, नाम है इसका अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग। बुधवार की शाम का ये स्पेशल शो जहां पर हम आपको मिलवाते हैं हर बार एक नए कॉलेज से, हर बार वहां के स्टूडेंट से। और जहां तक रामजस कॉलेज की छाप की बात है, भाई क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स हो चाहे सिविल सर्विसेज हो, रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हर फील्ड में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे ये प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं आप। और जहां पर रामजस कॉलेज की बात आती है तो भाई आकाशवाणी के साथ उनका कनेक्शन तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बॉलीवुड से भी उनका कनेक्शन रहा है। और आज की मेरी प्लेलिस्ट जो है वो उन्हीं गानों पर आधारित है जिन फिल्म की शूटिंग जो है वो रामजस कॉलेज में हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी हॉटस्पॉट है बॉलीवुड के फिल्म्स की शूटिंग के लिए और उन्हीं में से कुछ गाने मैं चुनकर लाई हूं आपके लिए स्पेसिफिकली फ्रॉम रामजस कॉलेज। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, जहां हम आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। और आज हम पहुंचे हैं कहां पे, रामजस कॉलेज। हमारी सहयोगी माला नेगी ने की वहां के बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत, वहां की बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें, इन सब में से चुनकर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अंश, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है ना सिर्फ थोड़े से ही कहना चाहिए कि समय की इजाजत देता है, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो बेस्ट है वो पहुंचाया जाए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हमारा ये प्रोग्राम अल्फा जिन कैंपस कॉलिंग आप सुन रहे हैं। रामजस कॉलेज जहां का मोटो है ज्ञानात परतरम नाही, नॉलेज हैज नो कंपैरिजन, यानी कि ज्ञान की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती है। और वाकई में ज्ञान किसी भी तरीके का हो, चाहे वो एकेडमिक्स की बात करें, चाहे वो टैलेंट की बात करें, आप आर्ट की बात करें, और किसी भी तरह की प्रोफेशनल कहना चाहिए कि नॉलेज की बात करें, सब चीजों की जो ज्ञान होता है, सब चीजों की जो नॉलेज होती है, उसकी बराबरी वाकई में किसी से नहीं की जा सकती, और यही मानना है इस कॉलेज का। आइए जानते हैं कि माला नेगी ने आगे किन स्टूडेंट से बातचीत की।
3: तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में, और अभी मेरे साथ है कॉलेज की एक स्टूडेंट जो कि कुछ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है। तो पहले यानी बुझाएंगे, इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपका नाम?
4: मेरा नाम मनस्वी है।
3: मनस्वी, क्या परफॉर्म करने वाले हो आज?
4: मैं एक किरवानी में भजन प्रस्तुत करने वाली हूँ, मिलता जा।
3: क्या बात है, क्या बात है। ऑल द बेस्ट टू यू।
4: थैंक यू।

0: कॉलेज में, और मेरे साथ हैं अमन जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ठुमरी गाने वाले हैं। आइए इनकी ठुमरी को मिलकर एंजॉय करते हैं।
1: बरसन लागी

0: लागे सावन बूंदिया राजा तोर बिन लागे ना हा मोरा जिया।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे साथ है रामजस कॉलेज की ईसीए से मोहम्मद इस्माइल और कुछ बहुत ही बेहतरीन आज हमारे लिए खास तौर पर लेकर आए हैं।

हाय, तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में अक्षत के साथ, ECA के मेंबर हैं और एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हमारे बीच में है। आइए इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं।

इतनी खूबसूरती से सुरों को निभा रहे थे जो वो हैं रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। रामजस कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और वहां के स्टूडेंट्स से, वहां के टीचर्स से, वहां के प्रिंसिपल से की उन्होंने बातचीत। और इस कॉलेज में ना नए और पुराने का बहुत बेहतरीन संगम है, क्योंकि 100 साल जो है वो कॉलेज को पूरे हो चुके हैं। 2017 में कॉलेज ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। यहां तक कि इसकी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आपको कॉलोनियल एरा के साथ साथ मॉडर्न आर्किटेक्चर दोनों का मेल जो है वो देखने को मिलता है। वहीं से हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हमारा

0: हुआ। उस वक्त जो दिल्ली का स्वरूप था वो तो जिसे हम वॉल सिटी कहते हैं वहां था, जिसे दिल्ली छह भी लोग कुछ कहते हैं, उसके एक कूचे में ये स्टार्ट हुआ। जो हमारे कॉलेज के फाउंडर हैं लाला केदारनाथ जी, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन 1916 में शुरू की। 1916 में उन्होंने एक स्कूल शुरू किया और 1917 में उन्होंने एक रेजिडेंशियल कॉलेज की, और यहाँ कॉलेज के लिए मैं उसको वर्ड यूज करूंगा, डिग्री कॉलेज शुरू किया
1: जी।
0: और तब ये शुरुआत बहुत छोटे रूप में हुई। उसके बाद में ये दिल्ली छह से निकल के दिल्ली के एक दूसरे से जो आज के दिन में अनंत पर्वत कहा जाता है वहां गया, जो जिसका नाम पहले काला पहाड़ था, क्योंकि वहां पे ग्रीनरी नहीं थी, वहां पे सिर्फ काले पत्थर थे, जिसको वहां पे हमने खुद देखा अपनी उम्र में, उसको क्रेशर लगे हुए थे, उससे रोड़ी बनाते थे। और उसके बाद 1952 से ये कॉलेज इस प्रमिसेज में आया हुआ है। उस भी वक्त ये पूरा रेजिडेंशियल, पूरा तो नहीं, हाँ रेजिडेंशियल कॉलेज था। आप इस कॉलेज में घुसिए, बहुत अलग तरह की शांति, अलग तरह का सुकून है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग में ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत अच्छी जगह पे, एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ इंस्टीट्यूशन की पहचान होती है। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे सुखद इतिहास इस कॉलेज का रहा, जिसे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी यहाँ आए, और जब ये कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ अनंत पर्वत पे, उस अनंत पर्वत नाम ही उन्होंने महात्मा गांधी जी ने रखा, पहले उसका नाम काला पहाड़ होता था
1: जी।
0: और इस कॉलेज के अंदर चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ छुप के रहे ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस कॉलेज के इतिहास अगर देखें तो पूरा राष्ट्र भावना से ये आज भी और पहले भी भरा हुआ था। तो इस कॉलेज में हर जगह पे इस तरह की अनुभूति आपको आज भी लगती है कि जो यहाँ के बच्चे आज से 50 साल 100 साल पुराने थे या आज के बच्चे भी हैं, उनमें राष्ट्रीयता का भाव बहुत है, जो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेने से ज्यादा मैं हर विद्यार्थी के बारे में कहूंगा, जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी एक ऐसी संवेदना है, शायद ये कॉलेज की वैल्यूज हैं जो हमारे हर विद्यार्थी में है।
1: और जैसे कि आपने कहा कि विद्यार्थी जो है वो इस कॉलेज की जान है, विद्यार्थी चाहे वो पहले के थे या आज के हैं, अगर राष्ट्रहित की बात करें तो हमेशा वो राष्ट्रहित के साथ खड़े हैं और विद्यार्थियों के हित के साथ आप खड़े हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे हैं आप इससे पहले, और बच्चों से आपका प्रेम किसी से छुपा नहीं है। रामजस कॉलेज में आना भी बच्चों का एक सपना होता है कि हम रामजस कॉलेज में आके पढ़ेंगे। क्या टेक्निक्स, क्या ट्रिक्स वो लगाएं जिससे कि CUET को बहुत ही आसानी से पार करके रामजस कॉलेज तक का अपना सफर पूरा करें?
0: देखिए, मुझे लगता है कि पहले इसके बारे में दो लाइनें ये कहूंगा, सबको सम्मान भाव से और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये एक ऐसा एग्जाम रखा। अब ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर्टिकुलर बोर्ड का स्टूडेंट था, वहां पे नंबर कम मिलते थे इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और या इस प्रति बोर्ड में था तो इस बच्चे का एडमिशन हो गया क्योंकि वहां नंबर ज्यादा दिए जाते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो सभी के लिए एक ही रूप से, एक ही समान रूप से दिया जाता है। जो NCERT की आपकी किताबें हैं, जो आपका CBSE का सिलेबस है, उसके हिसाब से तैयारी करिए, आप ऐसे किसी भी एग्जाम में जरूर सफल होंगे और आपकी मेरिट इतनी अच्छी होगी, जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स आप चाहते हैं वो आपको अपनी इच्छाओं के स्वरूप मिल जाएगा। एक चीज कहूंगा कि आप कभी भी कॉलेज को मत चुनिए, आप अपने कोर्स को चुनिए, और क्योंकि किसी भी महाविद्यालय के आप स्टूडेंट रहें, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलती है और जो सिलेबस है वो प्राय CBSE का सिलेबस होता है
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रामजस कॉलेज अब अल्फा जेन और रेनबो फैमिली के साथ जुड़ चुका है, आकाशवाणी फैमिली में शामिल हो चुका है। थैंक यू सो मच सर।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: वाकई में हर कॉलेज की है हिस्ट्री, लेगेसी, अचीवमेंट्स, एलुमनाई, एकेडमिक सोसाइटी, स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ और बहुत कुछ, और ये सब कुछ जो हम जोड़ते हैं कॉलेज लाइफ के साथ में हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। नाम है इसका अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन, जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पे। फिलहाल आज हमने की रामजस कॉलेज की सैर, अगले हफ्ते एक बार फिर से एक और नया कॉलेज, एक और नया गलियारा, एक और नई हिस्ट्री, लेगेसी, अचीवमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा हम समेट कर लाएंगे आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन में आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं रामजस कॉलेज और रामजस कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने की वहां के प्रिंसिपल से बातचीत, आइए जानते हैं।
1: तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: धन्यवाद
1: सर। रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शुरुआती 3 कॉलेजेस में से एक है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी लेगेसी है। ऐसे में कॉलेज हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें फेस करता है, नई नई अचीवमेंट्स लेता है। जानना चाहेंगे कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो आज भी रामजस कॉलेज को लेकर आपके जहन में आती है और बिल्कुल लेटेस्ट लगती हैं।
2: देखिए, ये रामजस महाविद्यालय 1917 में शुरू

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

GST Council Commercial Business रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाए छी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाए छी, जहां पूर्वरु 28% थिला। HS कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती GST दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

0: हेलो
1: अपा नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते कौट कल कर
1: बुलु पटनायक घसीपुरा आनंदपुर केन्दुझर कहते
0: आज्ञा स्वागत लाइव चिट को
1: धन्यवाद
0: आज टॉपिक ऊपर कौन कहिबे
1: आज्ञा
0: आज टॉपिक ऊपर कौन कहिबे
1: मैडम आज टॉपिक कौन अच्छी शुनी पार नहीं
0: आज टॉपिक अच्छे साथी जे जॉइंट फैमिली भी आमर अच्छी आउ न्यूक्लियर फैमिली भी अच्छी तो तार प्लस पॉइंट सब कौन आपण निज लाइफ रे जॉइंट फैमिली रो प्लस पॉइंट कौन देखी चंती आउ न्यूक्लियर फैमिली रो प्लस पॉइंट कौन देखी चंती आम सहित शेयर करंतु
1: दुईटी फैमिली देखिया को बोले जॉइंट फैमिली सब थारु भलो जॉइंट फैमिली रे एकता थाय संपर्क थाय बुझावणा थाय समन थाय तो जॉइंट फैमिली द्वारा बापा माँ पुओ झियो जेजेबापा हुवंतु जेजेमा हुवंतु आई हुवंतु बा खुड़ी हुवंतु अजा हुवंतु समस्त के भीतर गोटे भल संपर्क थाए एकाठी बसिक खाइबा एकाठी बसिक कथा हवा ताठारु भल आउ किछि न थाए तनु मो मतरे जॉइंट फैमिली भल
0: आज्ञा पहले आपण केबे न्यूक्लियर फैमिली रो किछि प्लस पॉइंट देखि नांती
1: से फैमिली रे प्लस पॉइंट जदि अछि सेतेटा नाही
0: तेबे से प्लस पॉइंट लिस्ट रो गोटे भी कहंतु आमी टिके सुनिबा को चाहिबो
1: प्लस पॉइंट भितरे गोटे थाए जे समानक बधरे संपर्क थाए आउ किंतु संपर्क थाए बुझावण थाए किंतु एकाठी बसी खाइबा एकाठी बसी की कथा हवा गोटे एकता बोध उपरे रहिबा सेइटा न थाए
0: आज्ञा तेबे बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर एते मूल्यवान मतामत पई
1: आपणकर भल सुंदर उपस्थापना पई आपण बहुत धन्यवाद जणाउछि नमस्कार
0: रहिली नमस्कार देखिन अब नेक्स्ट कॉलर किए आम सहित जोड़ी हेइछन्ती आ कोट जोड़ी हेइछन्ती हेलो
2: भुवनेश्वरु कहुथिले कृपा सिंधु कवि
0: नमस्कार स्वागत करुछि आजर डायल इन लाइव चिट चैट को
2: नमस्कार मैडम
0: केमिति अछंती
2: बहुत बढ़िया अछि
0: आपन सहित बहुत दिन परे कथा हेछि बोधे
2: हां
0: आज्ञा ताले फटाफट कहि दियंतु आजर टॉपिक उपरे आपन कर कोन मतामत रहबो
2: आगुरु जोटा जौथ परिवार थिला सेतळे बेसी छंद कपट नथिला स्कूल मास्टर थिले आ बड़ पीसा किछु को माने से चासो वर्ष कर बुझंदी ताकर तीनटा पुओ तीनटा झियो आमर पीसा घर होची चारटा झियो दि गोटे पुओ माने से सान पीसा

डायल इन लाइव लास्ट कॉल। हेलो हेलो हेलो हेलो।

0: हेलो
1: हेलो
0: किए कहते कोर्ट कॉल कर
1: बबलू कह कटकु
0: नमस्कार स्वागत कर लाइव चिट चैट को तेज समय बहुत कम अच्छे साथी जल्दी जल्दी कह दिखा आज टॉपिक ऊपर आपण मतामत
1: जॉइंट फैमिली और शॉर्ट फैमिली भीतर तो बहुत फरक अच्छी जमती कि प्लस पॉइंट होती जॉइंट फैमिली रे कि हमें किसी माने मजा मस्ती रे हमको कोटी उंगान न थाए आमर जेजे बापा जेजे मा रहिले कि दादा खुड़ी रहिले तांको सहित समय टा बीती जाय थाए आउ माइनस पॉइंट हैला कि जदी आम से फैमिली रे कोनोसी सदस्य टिके मोटा अंकर सैलरी हैला कि मोटा अंकर कोडी रोजगार से कले कि बिजनेस कले तो से भी तांकर जो निकटतर था जो पूरा पाख लोक था जोटा कि सीए कौना कौड़ी भितर गोटे बिवाद सृष्टि हुए मन गोटे द्वंद सृष्टि हुए गोटे एमती हुए कि जहाँकि डिस्टेंस होता है फैमिली भितर सर्ट फैमिली प्लस पॉइंट किए कौन प्रकार नरकत नाटा मानने हाँ ठीक ठाक चली थी
0: जहाँकि
1: बाबा मामा थे कि माइनस पॉइंट है
0: मूल्यवान मतामत
2: नूआदिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भिएतनाम राष्ट्रपति तो लाम को मध्यरे आज द्विपाक्षिक आलोचना होइछि। तो लाम तीन दिनिया भारत गस्तरे आसिछन्ति। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा आज राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इस्तफापत्र प्रदान करिछन्ते। सेपटे पश्चिमबंग और तमिलनाडु नूतन सरकार गठन आरंभ होइछि प्रक्रिया। केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी अध्यक्ष भावे नियुक्त हेले शशि शेखर भाम्पति। मुंबई अंतर्जातीय चलचित्र महोत्सव सहित वेब डक बजार द्वितीय संस्करण आसंता जून मास 16 तारीख मुंबई एनएफडीसी कम्प्लेक्स आयोजन 18 तारीख पर्यंत।

GST Council Commercial Business रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाए छी। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाए छी, जहां पूर्वरु 28% थिला। HS कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती GST दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा एही जानगुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं आदि कवि की रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देव नदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे, तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

0: प्रशासन निर्माणस्य प्रकटिता प्रतिबद्धता। असमराज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा अद्य स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। नूतन प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः प्रायः मई मासस्य एकादश दिनांकानन्तरं भविष्यति। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम बिहार केरलम तमिलनाडु पुडुचेरी राज्येषु अतिवृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये अंकीय प्रौद्योगिकी दुर्लभ मृदा भेषज उत्पाद विनिमयनम् सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा अंकीय दान प्रणाली सहैव संस्कृति पर्यटन क्षेत्रेषु अनेकानि संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम महोदयेन सह संभाषणानन्तरं सन्धिः अजायत। चर्चावधौ उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषु विषयेषु अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विस्तृतां चर्चां कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सन्देशे अकथयत् यत् वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितः सन् एकमासाभ्यन्तरे एव राष्ट्रपति तो लाम महोदयस्य इयं प्रथमा भारत यात्रा सूचयति यत् सः भारत वियतनाम सम्बन्धाय प्राथमिकतां ददाति।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: सह अवोचत् यत् न्यासं जीवन्तं स्थापयितुं भारतं वियतनाम देशस्य प्राचीन चंपा सभ्यतायाः माइसन अथ च न्यान ताओ मंदिराणां जीर्णोद्धारं कुर्वतस्ति।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: वित्तीय संपर्कम वर्धयितुम् अद्य उभाभ्याम देशाभ्याम केन्द्रीय वित्त कोषयोः मध्ये सहयोगः सुदृढः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतस्य यूपीआई अपि च वियतनाम देशस्य फास्ट पेमेंट इति प्रणाली इत्येतौ अपि शीघ्रमेव सम्बद्धौ भविष्यतः। सः अवोचत् यत् भारतस्य एक्स्ट ईस्ट नीतेः तथा च विजन ओशन इत्यस्य वियतनामः एकः मुख्यः आधारस्तम्भो वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिः तो लाम महोदयः अवोचत् यत् वियतनाम देशः भारतेन सह 50 वर्षाणां राजनैतिक सम्बन्धानां अपि च 10 वर्षाणां व्यापक रणनीतिक सन्धिः इत्यस्य परिणामान् अतीव महत्वपूर्णान् मन्यते। तमिलनाडु राज्ये तमिलनाग वेत्री कजगम टीवीके इत्यस्य संस्थापकस्य सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे नूतनं शासनं निर्मातुं राजनैतिक वार्तालापः तीव्रः अभवत्। यतः तस्य दलस्य बहुमत संख्या 18-100 न्यूना अभवत्। राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरः अद्य अपराह्णे केरलात् चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। नियुक्तः मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अद्य सायं राज्यपालेन सह मिलित्वा प्रशासनं निर्माणार्थं आवेदनपत्रं समर्पयिष्यति। यावत् तमिलनाडु राज्ये विजयस्य नेतृत्वे टीवीके प्रशासनस्य समर्थनार्थं दलानां मध्ये अनैक्यं विस्तृतं भवति सहैव डीएमके कांग्रेस दलयोर दीर्घकालीनं मैत्रीभावमपि संकटग्रस्तम् अस्ति। कांग्रेस दलस्य यस्य 5 विधायकाः सन्ति टीवीके दलस्य समर्थनं कर्तुं निश्चिताः ते सन्ति। संस्कृत

0: वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। असम राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा अद्य गुवाहाटी नगरस्य लोकभवने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य महोदयाय स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियायाः समाप्त्यनन्तरं मुख्यमंत्रिणा एतत् पदं त्यक्तम्। निर्वाचन परिणामानां घोषणानन्तरं राज्ये नूतन प्रशासनस्य निर्माणार्थं एतेन मार्गः प्रशस्तः अभवत्। त्यागपत्र समर्पणानन्तरं प्रसार माध्यमैः सह संभाषणं कुर्वन् डॉ शर्मा अवदत् यत् राज्यपालेन मंत्री परिषदः त्यागपत्रं स्वीकृतम्, सहैव हि वर्तमान विधानसभा विखण्डिता। नूतन प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः प्रायः मई मासस्य एकादश दिनांकानन्तरं भविष्यति। आगामी मुख्यमंत्रिणः विषये पृष्टे सति सः स्पष्टीकृतवान् यत् भाजपा विधायक दलं नेतृत्व विषये निर्णयं विधास्यन्ति। तदनन्तरमेव नूतन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदः निर्माणं भवेत्।
1: जब तक नया मंत्री सभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्री सभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: पश्चिम बंगे नूतन भाजपेति दल प्रशासनस्य शपथ ग्रहण समारोहः मई मासस्य नवम दिनांके कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड क्षेत्रे आयोजितो भविष्यति। राज्य भाजपा अध्यक्षः शमीक भट्टाचार्यः वार्ताहरैः सह संभाषणे अवोचत् यत् समारोहः प्रातः 10 वादने आरप्स्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः अपि च भाजपा शासित राज्यानां अनेके मुख्यमंत्रिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी समेत्य करैकल क्षेत्रे कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। ऋतु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु असमे, मेघालये, पूर्व राजस्थाने, हरियाणायां, चंडीगढ़े, सहैव दिल्ली नगरे कतिपयेषु स्थानेषु विद्युत्पातेन सह झंझावातस्य तीव्र वायोः च संभावना वर्तते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोर्मध्ये क्रीडा भविष्यति। सायं 7:30 वादने क्रीडा आरप्स्यते। ह्यः दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 स्तोभैः पराजितम्। पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम इत्यमुना सह संभाषणं विहितवान्। टीवी के प्रमुखेन विजयेन तमिलनाडोः राज्यपालेन सह कृतं मेलनम्। असमराज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा अद्य स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान् इति वार्ताः।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर नकरी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్ తెలిసి తెలుతాక్ समय वर्तमान संध्या 17:26 आउ 18 सेकेंड आउ या सहित आरंभ हो जाए शो संध्यासर आ संध्यासर शो नहीं मु अछि आपन को रेनबो दोस्त शुभश्री आज आपन को सहित ए जो आम सेगमेंट संध्यासर ए संध्यासर सेगमेंट माध्यम रे आपन जानि परबे निजो प्रियजन मानको निजर मनर कथा जानि परबे तांको निजर गुड विशेस भी सहित जदि आज कहार बर्थडे किंवा एनिवर्सरी थाए तांको मध्य आपन जानि परबे निजर गुड विशेस आमर ए संध्यासर सेगमेंट माध्यम रे तबे केमती जानिबे तांको निजर विशेस आमको सिंपली मेसेज करी मेसेज करबा निजो फोन रो मेसेज बॉक्स को जाई टाइप करंतु एफएमआरसी टिके स्पेस दे जहां को मेसेज टी डेडिकेट करबा को चाहौ छंती तांको ना ओ एड्रेस लिखंतु तापर टिके स्पेस दे निजो रो मेसेज टी को लिखी तापर निजो रो ना ओ ठिकाना लिखी पठे दियंतु आमा नंबर 09495963210 एवं व्हाट्सएप नंबर टी होचे 88952542900 এই দুইটি নম্বর মধ্যর আপনার কোনসিতিরে বি নিজ মেসেজ কো পঠাই পারিবে আর জানি পারিবে নিজর প্রিয়জন মানঙ্কু নিজর মনর কথা তথা জানি পারিবে তাঙ্কো নিজর গুড উইশেস

नेक्स्ट एसएमएस टी करिछंती बापी कटकरु आज तांकर बड़ नानी प्रीति जन्मदिन आ शुभ जन्मदिन अवसर रे सी तांको सान नानी प्रणति एवं तांकर पूरा परिवार तांको जणिछंती बेस्ट विशेस ता सहित जणिछंती ढेर सारा शुभकामना कहिछंती आम तरफ रु मध्य तांको गुड विशेस सेंड कर दबाकु निहाती साथी आज आपणकर बड़ नानीकर शुभ जन्मदिन आई शुभ जन्मदिन अवसर रे आम तरफ रु आमर पूरा एफएम रेनबो परिवार तरफ रु आपणक बड़ नानी को ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना तबे साथी बहुत बहुत धन्यवाद आपण आम कार्यक्रम रे शामिल हेले निजर गुड विशेस बेस्ट विशेस निज प्रियजन मानक पाखरे सेंड कले आमर ए संध्या सर सेगमेंट माध्यम रे

0: हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।

0: जोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Folland conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉक सीरी नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे।

0: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
1: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित

0: पर आगमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिन्दुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं, वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
3: Culture, connectivity aur capacity building ke saath saath security, sustainability aur supply chain resilience. हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
2: The Prime Minister said to keep the shared heritage alive, India is restoring the Mysore and

शिक्षण 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान शो चली अभुला स्मृति अभुला स्मृति आज आपने शुणुंट नाइंटीज रखी एवरग्रीन सॉन्ग्स सो नेक्स्ट गीतटी आपण पहुंचा जा पुलिस पब्लिक कथचित्र जो थे कि कंठदान कर अमित कुमार एवं लता मंगेशकर गीतटी को लिखिंट असद भोपाली एवं कंपोज करिसंती राम लक्ष्मण तबे पहुंचली साथी ए सुंदर गीतटी आपण को पाखरे

0: अब की करा है कुड़िये?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं।
0: हाँ
2: अब लागे ना मोहे

रेनबो एसएमएस रे नेक्स्ट मेसेज टी करिसेंती नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुडा गंजाम रो तांको परे परे मेसेज टी करिसेंती दुर्गा प्रसाद दळै जुब्रा परिसर साई कटक रो एवं नेक्स्ट मेसेज टी करिसेंती सुकांत माझी बिसोई मयूरभंज रो साथी पहुंचेली आपन मनक पसंद रखिता

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Folan conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम

0: ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय यह सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही यह सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक
2: आजिर शेष समाचार मुख्यांश सह मु सुभाष चंद्र शतपथी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नूआदिल्ली में भियतनाम राष्ट्रपति तो लामक सह विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे आलोचना कर 2030 मसीहा सुधा द्विपक्षीय वाणिज्य कारबार परिमाण को 25 बिलियन डॉलर रे पहुंचाइबाकु लक्ष्य धार्य कर आतंकवाद विरुद्ध भारत लड़ई को समर्थन कला भियतनाम। तमिलनाडु टीवीके मुख्य सी जोसेफ विजय सरकार गठन करने को राज्यपाल दावी उपस्थापन कर पश्चिमबंग आसंता शनिवार दिन नूतन सरकार शपथ ग्रहण कर राज्य बीजेपी मुख्य समीक भट्टाचार्य सूचना। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल संप्रसारण आसंता पटना गांधी मैदान में अनुष्ठित हो। गुजरात गस्तर द्वितीय दिन में पूंजीपति आलोचना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शिल्प समृद्धि क्षेत्र में देशर एक प्रमुख केन्द्र भाव उभा ओडिशा। राज्य नगर उन्नयन विभाग समीक्षा बैठक राजधानी ओडिशा अर्बान एकाडेमी अनुष्ठित। राज्य सरकार दृढ़ नेतृत्व और दृष्टिभंगी उन्नयन एवं नूतन गति धारण कर विभागीय मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र। नूआदिल्ली विद्यालय परिचालना कमिटर निर्देशावली उन्मोचन कले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। राज्य में आसंता 7 दिन पर्यंत काल बैशाखी जनित वर्षा होगा नहीं विभिन्न जिला को सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। समाचार मुख्यांश आज पई एतिकरे शेष होला।

0: ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ବା ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଡେ ଭାବରେ। So, save lives, clean your hands.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

चेंज हो जाउछि ठीक आपण स्क्रोल करथुवा रील भली तेणु ए जो इंस्टेंट परिवर्तन आसुछि पागर निज स्वास्थ्य को ठीक रखिबा निहाते भाबे टिके कष्ट त निश्चय हबो किंतु हमकु चेष्टा करबाको पडिबो कारण लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड स्ट्रगल हेउ पछि आमे हमकु परफेक्टली सुस्थ रखिबा दरकार त आउ सेथि पई दरकार प्रत्यह जोगो आउ प्राणायाम जोगो आउ प्राणायाम रो जो माने भी सहाय्य नौछंती से माने परफेक्टली फिट एंड फाइन रहंती सब बेले जेकोसी ऋतु होता ना कहीं अचानक पागर परिवर्तन होता ना कहीं तेणु जोग आउ प्राणायाम को डेली प्रैक्टिस करंतु एवं सुस्थ रुहंतु आउ एमती हमको समय थांतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे दिल से दिल तक।

आज सुबह सूरज बिल्कुल आप जैसा निकला, आज सुबह सूरज बिल्कुल आप जैसा निकला, बिल्कुल वही खूबसूरती, वही नूर, वही गुरूर और वही सुरूर, और वो भी आपकी तरह हमेशा दूर। दूर रह के भी पास होते हैं, हमेशा आपके साथ होते हैं। ट्यून कर चंदी 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनुरहिया जी मॉर्निंग मेलोडी को नहीं इम्ते सुनो धान तो आमको

उगते सूरज की पहली किरण कह रही है हो चुके हैं नए दिन की शुरुआत। समेट लो खुशियों के पल आंचल में, आज में जियो कल की मत करो बात। अपने सपनों को साकार करने हेतु ईश्वर ने एक और मौका दिया है हमें। नया दिन नई सुबह की जोश और उमंग के साथ चलो नए प्रयास का करो आगाज। नुआ सकल सहित जीवन रोटे नुआ चैप्टर आरंभ हुए आउ ए नुआ चैप्टर रे लिखिबा दायित्व आपण कर कौन लिखिबे। हाँ बेले बेले समय परिवेश परिस्थिति भी लिखिबा को बाध्य कर।

सुबह सुबह सूरज का साथ हो, सुबह सुबह सूरज का साथ हो, गुनगुनाते परिंदों की आवाज हो, हाथ में चाय का कप और यादों में कोई खास हो, उस खूबसूरत सुबह की पहली याद में

0: ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक आरंभ है जी डायल इन लाइव चिट चैट आओ आजी कथा है बाप विश्वास ऊपरे लाइफ रे कहाँ को ना कहाँ को आमे निजो ठरो भी अधिक ट्रस्ट करी था कारण आम को लगे जे तांका पखरे आमे किछ भी तांको सहित शेयर करी परिबु आउ आमे जहाँ भी शेयर करिबु ताकु नेकि से माने आमको जज करिवेनि आउ सेति पई होय त सेमनको सहित आमे निजो को पूरा पूरी खोली दो एवं बहुत किछि कथा हे परु निजो मनर कथा हे परु त आजिर विषय हला जे लाइफ रे अपन काहाकु सबु थारु अधिक ट्रस्ट करंती आउ काहेकि करंती ए संपर्क रे यदि मतामत देबाकु चाहौ छंती तेबे आमको डायल करंतु 0671-230-3153 एवं कोहंतु हमको ए संपर्क करे आओ आओ आओ हम पखरे कॉलर जोड़ी हे गेलनी देखने बाकी करछदि कॉल हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हां नमस्कार
0: नमस्कार के कोछंती कोटु कोछंती
1: मो कुमारी दीक्षा गोपाल ग्राम सिनापड़ा पोस्ट परला थाना धर्मगर जिला कलाहांडी प्रदेश उड़ीसा देश भारत रु कहुतिली अपा केमिति अछंती
0: अरे वाह पूरा फुल एड्रेस सहित बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एमती समस्त कहबा दरकार केमती अछ केमती अछ केमती अछ
1: मो पूरा एकदम बिंदास रे अछि खुश रे अछि मस्त रे अछि आ पूरा जबरदस्त रे अछि
0: बहुत बढ़िया पूरा मोटा जबरदस्त जेहेतु अछि तेनु आजिर टॉपिक ऊपर कोन कहबे जबरदस्त कहि दियौ तू पूरा
1: मते टॉपिक का टिके जाना पहला नै टिके टॉपिक ता कहि देले
0: ओके आजिर टॉपिक हेला छि लाइफ रे अपन सबुठो अधिक कहा को विश्वास करंती आ काहे के विश्वास करंती
1: देखन त अपा आमे लाइफ रे आमे प्रथमे तो आमर भगवान अटंती आउ द्वितीय हेउछंती आमर पिता माता आउ तृतीय हेउछंती आमे जे कि आमको भल पाउछंती जे कि आमर अति विश्वास तांको हे आमे विश्वास करबा कथा आउ एबे देखंतु आज काली लोके ठकुछंती जो एबे साइबर क्राइम परि जे माने विश्वास करंती मु तोर एमिति गोटे लोक एमिति गोटे तोर मित्र एमिति गोटे तोर बंधु एमिति कहि कि से माने भी ठकंती मु सेति पई मु प्रथमे मु घर र निजर समस्त मोर निजर मोर सांग साथी एमिति कि आपनक भली समस्त को मु एमिति गोटे विश्वास करे आउ नहले मु बाकी को विश्वास करे नि अपा
0: ओके बहुत बढ़िया बहुत भल कथा शेयर करले साइबर क्राइम संपर्क जोटा कहले बहुत भल लागला
1: मु कहि कि अपा कहबा को मते सुजोग देबे कि
0: कोहंतु
1: मोर जने सांग थिले से सांग भी एमिति गोटे विश्वास रे पड़ी गले साइबर माने एमिति गोटे ठकामी कले आ से मोर सांगर 3 लाख टंका थिला अपा तार सब लूट करि नै गले सेति पाए मु कहारी को विश्वास करानी आमारो साइबर ठकामी थारु भी आमे दूरै रहि पारिबा मु सेइ ताई मु निजे निजे ही विश्वास करे
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद रहिली नमस्कार
1: अपा नमस्कार
0: कहिथिले दीक्षा कोलाहांडी रु आउ खूब सुंदर कथा तांकर आउ भलो कथा टिए से कहिले जे जो ठकेई होची केबे कहा उपरे ट्रस्ट करंतुनी निजो लोकंक छोडा तो आगो को के करछंती कॉल चला तो देखिनवा हेलो
2: अशोक पंडा मधुपाटणा कटक
0: केमती अछंती भाई
2: भलो अछि
0: आजर टॉपिक ऊपर कोन कहबे
2: देखो देखो गो मितणी मुक्ति मंडप

0: ट्यून करिचंति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकु दिल से दिल तक म्यूजिक में त्राण रहिचे आज डायल इन लाइव चित चैट रे आज हमें कथा होचे लाइफ रे सबठो अधिक विश्वास अपन कहा ऊपर करंती आ काहे की कॉल आसी गलानी देखने बाकी एक और छंदी कॉल हेलो गुड मॉर्निंग
1: मैडम नमस्कार
0: नमस्कार के कहछंती कोठ कहछंती
1: सविता कहतली जगतसिंहपुर
0: केमती अछंती सविता
1: बहुत बढ़िया आज
0: अच्छा बहुत बढ़िया भाबरे ताले आजरा टॉपिक ऊपर निजरा ओपिनियन शेयर करंतु
1: हां ओपिनियन शेयर करबे या मैडम देखंतु विश्वास मुळे जगत
0: निश्चय निश्चय
1: विश्वास रे प्रकृत रे जगत चलुचे किंतु से कथाटा को आजकल आमे माने सब सेटा को भूल प्रमाणित करचे केई काहा को विश्वास करना हाती विश्वास करू ना हाती किंतु मो जदी कहबी मो विश्वास करे केवल ईश्वर को आ मो परिवार को आ काहा को मोर विश्वास नै समस्ते समस्त को मो प्रथम रु मो समस्त को विश्वास करतली अंध भावे मो कहै मो सांग साथी मोर चिन्हा पट किंतु समस्त মানে মতো বেইমান কাম কলে মো পছে সেটা মো কেবল মো পরিবার আর মো ঈশ্বর কু

नमस्कार समस्त दिन टी बहुत भलरे जाऊ समस्ते बहुत व्यस्त हो व्यस्तता को आपण को से व्यस्तता भितर बाहरी करबा को माने आपण को माइंड को फ्रेश करिया पई आपण को सहित जोड़ी जाए जी आपण को सहित जोड़ी जी सुजाता दिन सारा रही मीठा मीठा गीत शुणी मीठा मीठा कथा मध्य हवा आपण को मत मध्य मागिबी से कनेक्टेड हे रही था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहित समय तो क्या अपेक्षा कैन समय ता बाटर गड़ी चले से तो शो चली कलाकार हाँ साथी भारतीय संगीत जगत रतक सुनेली नाम मान मन भावना भक्ति और सुर माधुर्य भरी जाए जहां कंठर जो दीपद गीत शुणीदे से मध्यरे जने भारत प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर भाव परिचित आपुवे से किए ना हाँ से आउ के ही भी नुहंती से होंगे कविता कृष्णमूर्ति जहां सुर में अच्छी शास्त्रीय संगीतर गांभीर्य और आधुनिक संगीतर माधुर्य दर्शक पर्यंत से हिंदी चलचित्र संगीत को निज स्वर से सजाई रखिंट तेरे साथी बर्तमान शुणी दौर कंठर सुंदर गीत टी कनेक्टेड रही था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहित

हाँ साथी कविता जीवन बड़ सफलता आसी अशी दशक से अनेक हिट गीत गाई स्वर भावनार गभीरता जहाँ श्रोता हृदय को स्पर्श कर से देशर प्रमुख संगीत निर्देशक मानक काम करी अनेक स्मरणीय गीत मध्य देछंती।

फ्रेंड्स ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक देखो ना कथा हे समय कोन कहा को अपेक्षा करिवो ता बटरे से गड़ी चलिवो सही समय सहित ताल दे आम को मध्य चलिबा को पड़ी थाए ना कोन कहचन्ती किंतु वर्तमान समय हे जे आपनकर फेवरेट शो किछि कथा किछि गीतर साथी मो अछि आपण मनक सहित सजादा किछि कथा किछि गीतरे ढेर सारा मीठा मीठा गीत सुनेबे ढेर सारा कथा मध्य होबा सेति भई कनेक्टेड हे रहिबा को पड़ी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहिता

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर चुन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी किछी कथा किछी गीत हां बंधु वयसर कृष्णचूड़ा माने केवल उत्साह नुहे दायित्व मध्य जेऊ बयसरे की आमको दायित्व नबा को पड़ी थाए ना कौन कहते जो समय कि निज लक्ष्य निर्धारण करने निहाती दरकार आमर परिश्रम और अध्यवसाय द्वारा से ही लक्ष्य को पूरण करने आवश्यकता साथी कृष्णचूड़ा फूल जपरी अल्प समय पर खेली थाए से परी युवावस्था मध्य सदाचार साधारण रहे ना माने सब रुहे तेणु यही समय को आम को सठिक भाव माने ठीक काम करी तार सदुपयोग निहाती करवा दरकार

वेलकम ब्याक ओन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी केची कथा केची गीत हां साथी बयसर कृष्णचूड़ा जीवन को रंगीन करी थाए जहां हम स्वप्न को देखिबार साहस मध्य दे थाए जो समय

0: फ्रेंड्स ट्यून कर चुन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सा दिल तक।
1: कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।